अंत लय छड़ाया सलोक महला पहला दुख दारू सुख रोग पया जा सुख ताम ना होई तू करता करना मैं नाही जाहूं करी ना होई बलहारी कुदरत वसया तेरा अंत न जाई लखिया रहाओ जात मह जोत जोत मह जाता।

गावन तुदन पवन पाणी बैसंतर गावै राजा धर्म दुआरे गावन तुदन चित गुपत लेख जानन लेख लेख धर्म बिचारे गावन तुदन ईसर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सवारे गावन तुदनो इंदर इंदरासन बैठे देवतयां दर नाले गावन तुदनो सिद्ध समाधि अंदर गावन तुदनो साध बिचारे गावन तुदनो जति सती

नानक क्या विचारे, सोई सोई सदा साचो साहिब साचा साची नाई, है पी होसी जाए न जासी रचना जिन रचाई, रंगी रंगी भाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई, कर कर देखै कीता अपना ज्यों तिस दी वडियाई, जो तिस भावै सोई करसी फिर हुक्म न करना जाई, सो पात साहो साहा पत साहेब नानक रहण रजाई, आसा महला पहला सुन वड्डा आखै सब कोए, केवड वड्डा डीठा होए कीमत पाए न कहया जाए, कहने वाले तेरे रहे समाए,

आओ। सब सुरती में लो सुरत कमाई, सब कीमत में लो कीमत पाई। ज्ञानी प्यानी गुर गुर हाई, कहन न जाई तेरी तिल वडे आई। सब सत सब तप सब चंगे आईया।

आखण वाला क्या विचारा, सिफती भरे तेरे भंडारा, जिस तू देहे तिसै क्या चारा, नानक सच सवारण हारा। आसा महला पहला

गै भूख उत भूख खाए चली यह दुख सो क्यों विसरै मेरी माए साचा साहिब सच नाए रहाओ साचे नाम की तिल वडे आई आख थके कीमत नहीं पाई जे सब मिलकै आखण पाहे वड्डा ना होवै घाट ना जाए ना ओह मरै ना होवै सोग देंदा रहै ना चूकै भोग।

वडेरे जिन हर हर सरधा हर प्यास हर हर नाम मिलै त्रिपतासह मिल संगत गुण परगास जिन हर हर हर रस नाम ना पाया ते भागहीन जम पास जो सतगुर सरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास धन धन सत संगत जित हर रस पाया मिल जन नानक नाम प्रगास राग गुजरी महला पंजवा काहे रे मन चित वह।

अगम अपारा सब त्यावह सब त्यावह तुद जी हर सच्चे सिरजन हारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्यावह संत हो जी सब दुख विसारण हारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंत

सेवह तुद जी जन नानक तिन कुरबाणा। हर त्यावह हर त्यावह तुद जी से जन जुग मैं सुख वासी। से मुकत पाए जिन हर त्याया जी तिन टूटी जम की फासी। जिन निरभउ जिन हर निरभउ त्याया जी तिनका भउ सब गवासी। जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी। से धन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी।

दीन बंध दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दस कंता। काल पाए ब्रह्मा बाप तरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा।

सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जक्षण उपजायो। आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सुवारी। सेवकन को सेव गुण सुख दियो, सत्रन को पालमो बाध कियो। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर अस फूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछानै, घट घट के पट पट की जानै। जब उदकर्ख करा करतारा, प्रजा धरत तब देह अपारा। जब अकर्ख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह धर सब हूँ। जेते बदन सृष्ट सब तारै, आप आपनी बूझ उचारै। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत बेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूड उचारत भेदा, जाको भेव न पावत बेदा। ताको कर पाहन अनुमानत, महामूड काश भेद न जानत। महादेव कौ कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेव। आप अपनी बुद्ध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तोहे तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, केह बिद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंक भयो राव कही पूपा। अंडज जेरज से तज कीनी, पुत पूज खान बहुर राच दीनी। कहूं फूल राजा हुए बैठा, कहूं सिमट पयो संकर इकैठा। सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव, आद जुगाद स्वरूप स्वयं भव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रण काता। जे अस तुज तब सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखित हवै मरे। पुरख जवन पाग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे।

सब काला दुष्ट अरिष्ट टर तत् काला कृपा दृष्ट तन जाहे निहर हो ताके पाप तनक मोह हरे हो रिद सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शाह श्वाय सकै ना कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास

दुष्ट दोख ते ले हो बचाई। सवैया पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते पो आंख तरे नहीं आने ओ। राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहे मत एक ना माने ओ। सिमरत शास्त्र वेद सब बहु भेद कहे हम एक ना जाने ओ।

थावड़ी, तिथे तू समरथ जिथे कोए नाहे, उथे तेरी राख अग्नि उदर माहे। सुन कह जम के दूत नाहे तेरा छड जाहे, पाओ जल बिखम असगाहो गुरसबदी पार पाहे। जिन कौ लगी प्यास अमृत से खाहे, कल मैं एहो पुन गुण गोविंद गाहे। सब सह

कोई न जाने तुमरा अंत उचे ते ऊचा भगवंत सगल समग्री तुमरे सूतर तारी तुमते हो सो तुमरी गत मित तुम्ही नानक दास सदा कुर्बानी पूर्णा जी सतनाम श्री वाहिगुरु एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी के पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमरक गुर नानक लई ध्याए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासे होई सहाय अर्जुन हर गोबिंद नु सिमरौ श्री हर राय श्री हर कृष्ण ध्याई जिस दिठे सब तुह जाए तेग बहादुर सिमरिया घर नौन दयावे ताए सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह साहेब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहेब महाराज जी सब थाई होए सहाय दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी। पंजां प्यारियां चौहां सब जादियां चाली मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड के छकिया देख चलाई ते गवाही देख के अंडिट कीता तिना प्यारियां सच्यारियां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी साहिब बोलो जी। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत शीस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लुहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आरियां ना चराए गुरुद्वारां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म निहारिया सिखी केसा स्वरसा सिंह निभाई तिन्हां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी साहिब बोलो जी। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धर के बोलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चित्यावे चितावन का सदका सर्ब सुख होए जा जह खालसा जी साहिब तह तह रशिया रियाट देखते फतेह बिरत की पैज पंथ की जी श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलो जी। सिखा नु सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सरदान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बंगे जुग हो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी। सिखां दा मन नीवा मत उची मत पत कर रखा आप वाहिगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दातार जी श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरद्वारिया गुरधामा जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया खुले दर्शन दीदार सेवा संभालता दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शो इन माण्यो के मां नितान्यो के ता न्योटियां दी ओर सच्चे पिता वाहिगुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ओ दोए कर जोड़ करूं अरदास तुद भावे ता आने रास महाराज जी आप जी दे चरणा च अरदास बेनती आप जी की महान बख्शिश होई शामा दे दीवाना दी आरंभता ही महाराज जी संगती रूप विच संपूर्ण सुखमणी साहिब जी दे जाप होए ने संध्या वक्त का समा जान के सौदा रहरा साहब के पाठ हुए महाराज जी उस समुची सेवा निभाउंदिया बाणी पढ़द्या आप जी की सेवा संभाल करद्या होइया बेअंत बेअंत भुला बख्श देनिया जी अगे वास्ते समत बख्शिश करनी शुद्ध गुरबाणी गायन करन दा बाल उद्यम बख्शिश करना जी बाणी का भाव ही संगतां दे हिरदे ते वसाउणा आया संगतां दी हाजरी दर प्रवान करनी सभना दी तिल बुल पिटावा दर प्रवान करनिया सभना नूं दरो करो नाम दान गुरसिखी जीवन बख्शिश करना चढ़दी कला बख्शिश करनी कृपा करनी महाराज जी दुखां कलेशा रोगां दा नाश करना जी सुखां दा प्रकाश करना देशा विदेशा विच रखिया बख्शिश करनी महाराज जी बेअंत संगतां दूर दराडे बैठे घरां विच लाइव गुरबाणी दे जाप सरवण कर रहियां हन जाप सरवण करदे आप जी का धन्यवाद करदे आ बेअंत माया गुरु घर वास्ते गुरु घर के सेवादारा सिंघां वास्ते ऑनलाइन भेटा कीती महाराज जी सारी संगत की हाजरी दर प्रवान करनी सभना की माया सबली करनी किरत कमाइयां विच बरकतां पाउणियां श्रद्धा भावनावां संपूर्ण करनिया चढ़दी कला बख्शिश करनी आप जी के दर घर के सेवक भाई महेंद्र सिंह बाजवा की देह रोगता वास्ते आप जी के चरणा च अरदास बेनती कृपा करनी जी सेवक परिवारों नूं देह रोगता तंदुरुस्तियां प्रदान करनिया चढ़दी कला बख्शिश करनी जी आप जी दीआं बख्शियां दाता विचों
ਪਵਿੱਤਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰੇ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜੋ ਛਕਿਆ ਆਪਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰੋ ਜੀ ਅਤੇ ਰਾਤਰੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ ਸਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲਣਾ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤਾ ਵੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਦੁਹਰਾ ਅਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੇ ਤਵੇ ਚਲਾਇਓ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾ ਕੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਬੋ ਚਾਹੇ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹਿਣਾ ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਾ ਮਿਲੇਂਗੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ

मेरे मन नाम अमृत भी, जेड़े नाम दा बंदगी दा परमेश्वर दी याद दा रूह दा लंगर छकदे ही रहिंदे ने। जिवें शरीर दा आपां प्रशादा दिन च कई कई वारी, रूह दी खुराक वखरी है। भोजन शरीर लई ते भजन तेरी रूह लई, फिर मन शांत, फिर अंदर टिका बनिया रहिंदा है। फिर सच्चे पातशाह कह रहे ने उस मालक दी छतर छाया बनी रहती है। चौ गिरद हमारे राम कार दुख लगे ना पाई, जो गाया जो सुनया। इसी तरह महाराज कह रहे ने हत्थां पैरां नाल कारोबार करिए, घर दे कम काज करिए, गृहस्थी हाँ पर रसना नाल कोशिश करिए। मंत्र दा जाप, बाणी दा जाप, जिथे भी मन टिक जाए, वाहिगुरु मंत्र, गुरु मंत्र, मूल मंत्र, कोई भी शब्द दा जाप, सारी एको ही बख्शिश है। ते कह रहे ने फिर श्वास व्यर्थ नहीं, सफले हो गए। ये श्वास बड़े कीमती ने। जदो करोना आया हर बंदा कहण नू मजबूर हो गया सी भी सारा कुछ लै लो, मैनू ऑक्सीजन दे दिओ, जिन्हां दी जान ते बनाई, सारा कुछ लै लो, ऑक्सीजन दे दिओ। फिर आपां बड़े प्यार नाल निरंकार ने श्वास बख्शिश कीते ने। भजो गोविंद भूल मत जाओ, मानुख जन्म का यही लाहा, कहंदे ने ए लाहा है भाई। उठदे बहिंदे हमेशा महाराज नूं याद करिए, फुल्लां चुकां दी खिमा। आओ जी भाई साहब जी, साडे बड़े प्यार वाले और बड़े सुचजे ढंग नाल सतगुरां दी बख्शिश मानन वाले, वरताउण वाले भाई साहब जी, ज्ञानी जसविंदर सिंह जी, जसवीर सिंह जी, खुश दिल, जो हमेशा ही, पहली बार नहीं, कई बारी इस स्थान दी हाजरियां पर चुके ने, उन्हां नूं बड़े प्यार नाल बेनती है आप जी की सेवा करन। असीस देव। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु।

नानक नाम आराधना कर जे आवहिरास गुरपुरे मेरी राख लई अमृत नाम हृदय में दिनो जन्म जन्म की मैल गई निवरे दूत दुष्ट बैराई गुरपुरे का जपिया जाप

का बड परता सिमर सिमर सिमर सुख पाया चरण कमल रख मन माही तंके शरण परयो नानक दास जानते ऊपर को नाही तंके शरण परयो नानक दास जानते ऊपर को नाही। वाहे गुरु भुगत ज्ञान दया भंडारन कट कट वाजे नाद आप नाथ नाथी सब जंकी रिद्ध सिद्ध अवरा साद संजोग विजोग दोए कर चलावे लेखे आवे भाग आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत

चाहत जुग जुग एको वेस। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान सत्कार योग सत्संग जी, आप जी वडभागी हो। संध्या दे दीवान दियां हाजरियां पर दियां, पंत प्रसिद्ध गुरु के कीर्तनिये भाई साहब भाई ओंकार सिंह जी हजूरी रागी जथे पासों गुरबाणी दा रस पिन्ना शब्द कीर्तन आप जी ने सरवन कीता। कुछ समय लई चल रहे जप बाणी विचों विचार दे दरमियान जो पावन पवित्र बचना दा पाठ आप जी ने सरवन कीता, ए जपजी साहिब दी 29वीं पौड़ी है। इस पौड़ी विच भी धन गुरु नानक सच्चे पातशाह किसे जोगी नू उपदेश करे, क्योंकि सतगुरां ने सिद्ध गोष्ट नाम दी बाणी जो रामकली राग विच उचारण कीती है, उतों ए सिद्ध होंदा कि सतगुरां दी बहुत लंबी ज्ञान चर्चा सिद्धां जोगियां नाल होई है। जप बाणी सतगुरां दी प्रमुख आद बाणी है। इहदे विच वी सतगुरु जोग पंथ दी गल करदे, पर सलीका तरीका मर्यादा वो अपनी इस्तेमाल कर दे। जोग पंथ दी नहीं, बल्कि उन्होंने उपदेश करें कि जोग ताई हो सकता है जे तुहाडा ए राह ए मार्ग ए रस्ता शरीर दा छड के सुरती दा बन जाए। हमेशा गुरसिख नू याद रखना चाहिए, गुरु नानक ने जो कृपा कीती है सानू आगमी बचन ए रब्बी बाणी दिती है, एदे विच सारा ही सुरती दा मार्ग है, शरीर दा नहीं है। शरीर दा काम इतना ही है कि घर तो चल के असी गुरु दी हजूरी विच आके बैठे हैं। भागां वाला शरीर वडभागी ने वो शरीर मनुख जेड़े चल के गुरु दी संगत विच आंदे हैं। सुनदे आ ना, वडभागी हर संगत पावें, ते जेड़े मेरे वर्गे भागां तो हीणे ने ओ संगत विच आउण दी बजाए इधर उधर ही भटक के अपनी जिंदगी दा कीमती समा गुजारे। जीवन निफली आजाई ते आकार थी गुवारे। हाओ प्यारे ओ, इस पवित्र पौड़ी अंदर जो जोगी पंथ नो संबोधन कर दे गुरु नानक साहिब असल जोग दा मार्ग दर्शाउंदे आ। भुगत जप बाणी एहो जी बाणी गुरु के प्यारे ओदे एक एक अखर दी विचार करनी होवेगी ताई ओ समझ आउंदा। मैं भाई साहब भाई ज्ञानी संत सिंह मस्कीन दी एक लिखत पढ़ी है, उन्होंने जपजी साहिब बारे अपने विचार एदां जाहर कीते। वो लिखते ने कि मैनू भी चा आया लिखण तो पहला, उत्साह प्रेम प्यार बख्शिया गुरु ने
कि मैं जप बाणी दी विचार हथीं लिखा। ते भाई साहब ने लिखनी आरंभ कीती। मुकम्मल जपजी साहब दा टीका करके फिर उन्होंने आप ही उन्हों शुद्ध करन दा यतन कीता। ते सिट्टा ये कट दे आप खुद के मैं तो ये मुकम्मल सही लिखिया नहीं गया, मैं मुकम्मल सही नहीं लिख सका। फिर कुछ सौदा कीतियां। ऐदा प्यारे हो ओ खुद महान विद्वान ऐसा कथन कर दे कि मैं कोई 16-17 वरी इनू घोखिया। आखिर गुरु नानक दे चरणा विच मैं बेनती की थी, दाता तेरी ये बाणी अजे भी मेरी समझ तो बारी। यो जप बाणी है जी। सतगुरु गुरु नानक साहब इस पौड़ी दा पहला लकब लफज वरत दे जी भुगत। भुगत दा अखरी अर्थ है जी खुराक। भोगण दा मतलब भोग दा अर्थ हुंदा खाना। भुगत खुराक। हुण जोगियां दी खुराक की है? वैसे ते बहुते ओ ने जिहड़े मैं कल भी बेनती कीती सी कि घरां विचों गृहस्थियां दे घरां दे विचों ही मंग के खांदे हैं, क्योंकि एक किरत करदे नहीं, मेहनत करदे नहीं, ते जद किरत नहीं करदे तो मंग के ही खाना पै गृहस्थियां दे घरां विचों। अज गुरुदेव बचन कर दे तेरी खुराक जोगी की होनी चाहिदी है जे तू जुड़ना, क्योंकि जोग दा अर्थ है रब नल मिलना। जोगी ओनू ही किया जा सकता है जेड़ा मिल गया। जोगी ओ है जेड़ा मिल गया। जोग दा अर्थ है जुड़ना, जेड़ा जुड़ गया है किदे नाल? रब नाल, परमेश्वर ना। ये अपनी खुराक नू एक नाम दें देने, मैं वो भी बेनती कर देवा, चूरन। चूरन भुगत खुराक तेरी जोगी की होवे ज्ञान। ध्यान देना, पौड़ी आरंभ करिए के हे जोगी जे तू जोग चाहुंदा प्रभु नल मेल चाहुंदा मिलना चाहुंदा ते अपनी खुराक की बना? ज्ञान। हुण ज्ञान दा अर्थ की करिए? सोची समझ। गुरु नानक साहिब दर्शाउंदे कि दुनिया दे ज्ञाना विचों सब तो वड्डा ज्ञान की है। सारी दुनिया अज्ञानता विच जीवन जीव रही है। ज्ञान असल ए है मनुख दे कोल कि इनू समझ सोझी होवे कि जिस एक निरंकार नू चेते करना, जिदे नल जुड़ना, ओदी सर्व व्यापकता जड़ी है ना, वो सारियां विच व्यापक है। ऐ ज्ञान होना सब तो पहला जरूरी है कि रब सारियां दे अंदर है, सब जीवां दे। हां, किसे ने इस नू प्रगट कर लिया ते कोई बहुतात उना लोगां दी है जेड़े खान पीन हसन ते सौन विच ही जिंदगी बतीत कर रहे। यही है ना साडा जीवन, खाना पीना हसना सौना। वड्डी गिनती साडी उन्हां लोकां दी, सानू ते कदे मरना भी चेते नहीं आया कि मर जाना, बल्कि
ਅਚਨਚੇਤ ਕਿਤੇ ਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਡਰਪੋਕ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮਰਨ ਦੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਮਤਿ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਕਿ ਮੌਤ ਨੂੰ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋਗੀ ਤੇਰੀ ਖੁਰਾਕ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ। ਗਿਆਨ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜੋ ਕੱਲ ਦੇ ਦਿਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਗਿਆਨ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਜੇ ਸੌ ਚੰਦਾ ਉਗੋਐ, ਗੁਰਦੇਵ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਗਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਉੱਗਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੂੰ ਉਹ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੰਦਰਮਾ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸੌ ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹੇ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਸੌ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਵਚਨ, ਜੇ ਸੌ ਚੰਦਾ ਉਗਵੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ, ਹਜ਼ਾਰ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏ, ਇਹ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਸੜ ਕੇ ਸਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਗਾ। ਇੱਕ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸੌ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਸੌ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਜ਼ਾਰ। ਜੇ ਸੌ ਚੰਦਾ ਉਗਵੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ, ਹਜ਼ਾਰ ਇਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਪਸ਼ ਤੇ ਠੰਡ ਨਾ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਮਾਲ ਹੈ, ਜਮਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਠੰਡੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਠੰਡੀ ਰੋਸ਼ਨੀ। ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਜਲਾਲ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲਈ, ਜਮਾਲ ਤੇ ਜਲਾਲ, ਇੰਨੀ ਰੋਸ਼ਨੀ। ਲਫ਼ਜ਼ ਵਿੱਚ ਜੇ ਵਰਤਿਆ, ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਸੌ ਚੰਦਾ ਉਗੋਵੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ ਹਜ਼ਾਰ, ਇਤੇ ਇਤਨਾ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, ਗੁਰਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਘੁੱਪ ਅੰਧੇਰ ਹੈ, ਜੇ ਬਾਹਰੀ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਵੀ ਜਾਏ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ। ਤੇ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰੇ ਅੰਧਾਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਜੇ ਸਲੀਕਾ, ਢੰਗ, ਮਰਿਆਦਾ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਸਲੀਕਾ, ਢੰਗ, ਤਰੀਕਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਵਰਨਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਧੇਰਾ ਹੀ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਫਲਸਫਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸੰਖੇਪ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿ ਲਓ, ਅਲਫਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਜਹਾਂ ਗਿਆਨ ਤਹਿ ਧਰਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ? ਜੇ ਧਰਮੀ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ,
वैसे ते असी धर्म दी फिलासफी पढ़ी नहीं, सुनी नहीं, विचारी नहीं, जानी नहीं, कोखी नहीं, फिर भी असी अपने आप नूं धर्मी ही अखवांदे हैं। सारिआं दा इह हाल है, सारी दुनिया दा। पर बाबा कबीर जी ते कपाड़ ही खोल दे, कहन लगे जिथे ज्ञान है धर्म उत्थे ही है। हुण अजे भी ये गल सुन के समझ के विचार के भी असी मुकम्मल विचार नहीं अजे कर पाए। जे ज्ञान दा होना ही धर्मी होना ते ज्ञान ते सारी दुनिया कहिंदी त्रेते युग विच रावण होया। त्रेते युग विच रावण, इनू इना ज्ञान सी कि मुकद्दस ग्रंथ भी इहदा जिक्र कर दे कि उहनू चौं वेदां दा ज्ञाता सी। कुछ ते लिख दे चारे वेद उहनू जुबानी कंठ सन, एडा वड्डा विद्वान। लेकिन एडे वड्डे विद्वान नूं, एडे वड्डे ज्ञानी नूं बाणी ने की कह दिता? समाज ते धार्मिक ग्रंथ कहिंदे कि बहुत वड्डा ज्ञानी रावण, बाणी कह रही है लंका गढ़ सोयने का भया। भया दा मतलब होया। ते गुरबाणी अंदर बाबा जी कहिंदे कि होया होएगा लंका सोने दा किला, गढ़ किले नूं कहिंदे लंका गढ़ सोने का भया मूर्ख रावण। लो बाणी उहनूं मूर्ख कह रही, सारी दुनिया उहनूं दानश्वर ऐलान रही है, मुकद्दस धार्मिक ग्रंथ भी कह रहे ने बड़ा वड्डा ज्ञानी होया। पर बाणी उहनूं क्यों मूर्ख कह रही है? ये मैं एक बेनती कर देवां, ये मुकद्दस जिहड़े धार्मिक ग्रंथ ने ना, जदों बंदा इहनां नूं पढ़ के इहनां दा अध्ययन करके सूक्ष्म जिही वी हौमे रखदा है ना कि मेरे वर्गा वक्ता कोई नहीं, मैं बाणी सारी पढ़ ली है, विचार ली है, ते कई वारी असानू पुछ दे ने गुरु के प्यारे भी तुसी की कर दे हो, ते असी बड़ी फकर नाल कहने हां कि मैं कथा वाचक हां। मैं की हां? कथा वाचक। पंजवें पातशाह महाराज ने बचन कीता बावन अखरी विच जिज्जा अखर दी व्याख्या करने हैं, ते साहिब समझांदे ज्यों जाने हों कथनी करता। यतन करना चाहिए कि विचार गुरु दे बचना दी ही करिए, गल गुरु दी करिए, इधर उधर दियां गल्लां करके कदे विचार दा समा जेड़ा नहीं पास करना चाहिए। सतगुरु बचन कर दे जेड़ा बंदा एक कहिंदा है अपने मुंह तो कि मैं कथा करदा, बाणी दा बचन याद रखना, ज्यों जाने हों हों मैं कथनी करता। हुण अगे सवाल दा जवाब सतगुरु दे रहे ने कि जिहदी ये समझ है, सोझी है, ज्ञान है जिन्हों, वह कहिंदा मैं कथा करदा। ज्यों जाने हों कथनी करता, वह है कि असल विच व्यापारी। इहदा अर्थ करन दी लोड़ है व्यापारी दी? वह दरअसल कथावाचक नहीं है, व्यापारी है। व्यापारी भी केड़ा? व्यापारी बसुद्धा ज्यों फिरता, एक जगह बैठ के व्यापार करन वाला नहीं, सारी बसुद्धा धरती ते तुरिया फिरदा, सारी धरती देशां विदेशां दे विच। अजीबो गरीब गुरु पंजवें पातशाह बचन कर दे, एक गल है
कि सौदा गुरु नानक दा वेच रहे हैं। सौदा गुरु नानक दा दे रहे हैं, संगता नू वेच रहे हैं। जे व्यापारी है तो वेच ही दिया ना फिर। लेकिन अपने आप नू कह रहे हैं कि मैं उदा लाभ सारा है आप ही ले रहे हैं। व्यापारी बस सुद्धा जी फिरता। साडे देश विच कुछ व्यापारी ऐसे ने जेड़े कुछ वस्तुआं साइकल ते रेहड़ी ते रख के घर घर जाके वेचते हैं। इनू असी लोग पंजाबी कहने फेरी वाला। की कहते आप? फेरी वाला, फेरी ला के वणज कर दे। धन गुरु पंजवें पातशाह महाराज ने ऐ ज्ञान हासिल करके जो घर घर जा विचार करदा कौड़ियां लई उपजीविका लई प्यारियो, असल विच उन्हों ही किया कि फेरी ला के सौदा ते वेच रहा, पर गुरु दा ना अपना करिया ते नामा भी आप लै रहे। ये फैसला है पंजवें पातशाह ज्ञान दी गल है। भी रावण कोल ज्ञान सी प्यारे, उनू मूर्ख क्यों किया? मैं कह के अगे चली आप। कबीर जी का बचन भी मैं पूरा सलोक अपने सांझा कर लवां। उन्होंने भी समझाया, कबीरा जहां ज्ञान तह धर्म है, ते जिथे ज्ञान होवे नाल झूठ होवे, ज्ञान भी है ते नाल झूठ भी है। जहां झूठ तह पाप, झूठ बोलना गुना है, पाप है। झूठे बंदे दा कोई ईमान नहीं हुंदा। सारे जप दा भाव अर्थ ए है किव कूड़ तुटै पाल। कूड़ की हुंदा जी? झूठ। पाल दीवार। मनुखी जीवन विच दीवार दी तरह जड़ा झूठ है, जिन्ना चिर झूठ दी कंध नहीं टुटदी उन्ना चिर गुरु कोल ज्ञान नहीं हुंदा, उन्ना चिर जोग नहीं हुंदा, मेल नहीं हुंदा। रावण कोल ज्ञान सी लेकिन नाल झूठ ते नहीं सी, उहदे कोल अहंकार सी, बहुत वड्डा अहंकारी सी ओ, इसलिए मूर्ख है। बाणी दे विचे जेड़ा बंदा नहीं पढ़िया, विद्या तलीम हासिल नहीं कीती, उनू किते भी बाणी अंदर मूर्ख नहीं किया। जेड़ा विद्वान है, जेड़ा पढ़िया लिखिया, उनू कई बारी बाणी विच मूर्ख किया। ध्यान मार के देखो क्यों किया? क्योंकि वह विद्या हासिल करके हंकार कर रहा है। करना की सी? विद्या विचारी तां परोपकार करना, परोपकारी ते बनया नहीं, हंकारी बन गया, इसलिए वो मूर्ख है। होर बड़े बच्चे ने पढ़िया मूर्ख आखी है। को पूछे सतगुरु पढ़िया नू मूर्ख क्यों कहंदे हो? की कारण है? अगे कारण दस दे। पढ़िया मूर्ख आखी है, जिस लब लोभ अहंकार। ये सारे अवगुण ने पढ़े लिखे बंदियां च। लब चस्का, लोभ लालच, हंकार होमे। रावण नू गुरबाणी ने तां मूर्ख किया, हंकारी सी। असल दे विच अखरी ज्ञान दी गल नहीं। कबीरा जहां ज्ञान, जिथे गुरु कोलो ए मिलिया ज्ञान जेड़ा ना, इनू एदां भी बयान कीता, ज्ञान अंजन गुर दिया।
ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ? ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਗਿਆਨ ਰੱਬ ਦੀ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕਤਾ ਦਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਸੁਰਮਾ, ਸੁਰਮੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ, ਅੰਜਨ ਸੁਰਮਾ, ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦੀਆ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਅੰਜਨ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਲਾਈਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਟਿਕ ਜਾਏ? ਇਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੋਗ ਦੱਸਦੇ, ਭੈ ਕੀਆਂ ਦੇ ਸਲਾਈਆਂ ਨੈਣੀ। ਭੈ ਮਤਲਬ ਡਰ। ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਡਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰੀ ਕਿਤੇ ਡਰ ਕੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਡਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿਹਾ, ਨਿਰਮਲ ਭਉ ਪਾਇਆ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇਆ। ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਭਉ ਦੀ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ, ਨਿਰਭੈਤਾ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਰ, ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ। ਸਮਾਜ ਦੁਨੀਆ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦੀਆ, ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਵਿਨਾਸ਼, ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੰਤ ਭੇਟਿਆ ਨਾਨਕ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਗਿਆਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੀ ਚਾਨਣ, ਉੱਥੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਕਬੀਰਾ, ਜਹਾਂ ਗਿਆਨ ਤੈ ਧਰਮ ਹੈ, ਜਹਾਂ ਝੂਠ ਤੈ ਪਾਪ, ਜਹਾਂ ਲੋਭ ਤੈ ਕਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ, ਉਹ ਲਾਲਚ ਵੀ ਕਰੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲਾਲਚ ਲੋਭ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਆਤਮਕ ਮੌਤ। ਕਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਮੌਤ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਮਾ ਕਰਨ ਦਾ ਗੁਣ ਹੋਵੇ, ਸਹਾਰਨ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਹਾਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦਾ, ਬੋਲ ਉਹ ਕਦੇ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਜੁਰਬਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਉਹੀ ਕਰੇਗਾ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅਵਗਨ ਨੂੰ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਵਧੀਕੀ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਸਹਾਰਨ ਦੀ। ਜੋ ਸਹਾਰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਵੀ। ਖੈਰ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਗਹਿਰੇ ਤਲ ਨਾਲ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਭਾਈ ਅਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸਲ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਖੁਰਾਕ ਭੁਗਤ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਪਿਆਰਿਓ? ਸਾਰੇ ਜਪੋ ਗਿਆਨ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਗਿਆਨ। ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਸੋ ਜੀ ਸਮਝ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇ, ਸੂਝ ਦੇ ਦੇ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦੀ, ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਮਾਨ ਨਾ ਕਰ ਬੈਠਣਾ, ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰ ਬੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹੰਕਾਰ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣਾ। ਹਉਮੈ ਨਾਮੈ ਨਾਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਵਿਰੋਧ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਜੋਗੀ, ਐਸਾ ਕਰ ਤੂੰ
के ज्ञान नो खुराक बना। दया भंडारण ये जड़ी खुराक है ना ज्ञान, इहदे नाल नाल तेरे अंदर हंकार दी बजाए दया आ जावे। की आए जी? दया। हुण देखो, जिथे दया होएगी धर्म उथे ही होएगा। जिथे दया होएगी धर्म उथे होएगा। जे जीवन विच दया नहीं है ते धर्म नहीं हो सकता। पढ़ो बचन, पिछे आप विचार कर चुके हो। तौल धर्म दया का पुत, धर्म जेड़ा ना दया दा पुत्र है। साढ़े विच दया है कोई नहीं, इन वेदा समझो मां है नहीं, असी पुत्र जमाना चाहते। ते इन्ने ते असी पढ़े लिखे सूझवान है ही हां कि मां तो बिना पुत्र जन्म लेगा। धर्म पुत्र है, दया मां है, दया तो बिना धर्म पैदा नहीं हुंदा। एदा जिवें मां तो बिना पुत जन्म नहीं ले सकदा। तौल धर्म दया का पुत। जदो दया आ जाएगी ज्ञान तो आउंदियां, गुरु को नो समझ सोझी आत्मक जीवन दी होवेगी, ज्ञान आवेगा, दया आ जावे ते दया तो ही धर्म ने पैदा होना है। लड़ी देखना तुसी। भंडारण दा अर्थ है भंडार नो वंडन वाली। तन गुरु नानक देव सचे पातशाह ने अंगना ला के भाई लहणे नो अंगद बनाया, गुरता गद्दी दे दिती। उन्होंने आके खंडूर साहब दे विच सिखी दा गुरु दे उपदेश दा प्रचार किया। ए प्रचार सी किरत करो, नाम जपो, वंड के शको। लंगर दी जुम्मेवारी गुरबाणी सिद्ध कर दी है कि गुरु अंगद देव सचे पातशाह दी आज्ञा नाल उहनां दी पत्नी ने संभाल लई। गुरु अंगद देव जी दी पत्नी। गुरबाणी च जिक्र आउंदा है, माता खीवी सो सोए जिन गोए उठाली। ओ माता खीवी, गुरु के मैल जगत गुर माता, जिन्होंने लंगर दी पंड चक्की सिर ते। पंड दा मतलब होंदा जुम्मेवारी, लंगर दी जुम्मेवारी लई। ते प्रमुख उथे लंगर दे विच केड़ी ऐसी वस्तु सी जेड़ी प्रसिद्ध होई? रस अमृत खीर कियाली। लंगर दौलत वंडी है, रस अमृत खीर। अज भी जाओ तुसी ते खंडूर साहब दे लंगर विच जेड़ी है ना खीर मशहूर है, वो लंगर जेड़े सज्जन गए होंगे। बहुता घ्यो पा के ना खालस माता खीवी संगतां नूं छकांदे। रस अमृत खीर कियाली। कियाली दा मतलब घ्यो पा पा के, घ्यो वाली खीर। अज मेरे गुरुदेव समझा रहे गुरु के प्यारे हो, दया जेड़ी है ना जो गुरु को सोझी समझ ज्ञान सिमरन जो भी मिलिया ये दाता जड़िया ने सांझिया ने, पर तेनू मिल गई ने। तेरे अंदर दया होएगी फिर दया एहो कुछ ही वंडेगी। ऐ जोगी, दया दा होना जरूरी है, ज्ञान दा होना जरूरी है, ते ज्ञान नू अगे दया भंडारण बन के वंडन वाली होवे। तेरे अंदर दया। कटकट वाजे नाद। जदों जोगियां दा लंगर तैयार हुंदा है ना, जिथे बहुत आद विचे होवन उथे इन्हां दे गले दे विचे
ਇੱਕ ਸਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਚੂਰਨ ਸ਼ਕ ਦੇ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ। ਸਹਿ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਸਾਜ਼ ਦੀ, ਉਹ ਤੇ ਹਰ ਘੱਟ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਜ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਨਾਥ ਨਾਥੀ ਸਭ ਜੰਕੀ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਅਵਰਾ ਸਾਧ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕੀ ਇਹ ਨਾਥ ਹੈ। ਨਾਥ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਮਾਲਿਕ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕਰਤਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਬਣਾਈ ਇਹਦਾ ਮਾਲਕ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੈ ਆਪ ਨਾਥ। ਰਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ, ਨਾਥੀ ਸਭ ਜੰਕੀ, ਨਾਥੀ ਦਾ ਅਰਥ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਨੱਥੀ ਕੀਤਾ। ਨੱਥੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੁਕਮ ਦੀ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਨਕੇਲ ਪਾ ਕੇ ਨੱਥਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਹਰ ਜੀਵ ਨੂੰ। ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆਪਾਂ, ਹੁਕਮ ਹੈ ਅੰਦਰ ਇਹੀ ਨੱਥ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਨੱਕ ਨੱਥ ਖਸਮ ਹੱਥ, ਕਿਰਤ ਧੱਕੇ ਦੇ ਜਹਾਂ ਦਾਣੇ ਤਹਾਂ ਖਾਣੇ। ਨਾਨਕਾ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਨਕੇਲ ਪਈ ਹੋਈ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹ ਕਿਰਤ ਦਾ ਧੱਕਾ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਭੇਜਦਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਨਾਜ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ। ਪਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਜੀਉ ਪਾਏ ਪਿੰਡ ਜਿਨ ਸਾਜਿਆ ਦਿੱਤਾ। ਰਜ਼ਾ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਉਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਣਾ ਪਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਆਪ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਨਾਥੀ ਸਭ ਜੰਕੀ, ਉਹਨੇ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਨੱਥ ਪਾਈ ਹੈ ਹੁਕਮ ਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੀ ਨੱਥ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ, ਲੋਕ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਵੈੜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਨਕੇਲ ਨੱਥ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਨੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪ ਨਾਥ ਨਾਥੀ ਸਭ ਜੰਕੀ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਜੋਗੀ, ਕੁਝ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਯਾਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਰਿੱਧ ਤੇ ਸਿੱਧ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕੀ ਨੇ। ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ

राम नाम एक आखिर किनका एक जिस जीव सावै ताकि महिमा गनी न आवै कांखी एक दर्श तुहारू नानकुन संग मुहि उधारू सुख मनी सुख मृत प्रभ नाम भगत जना कै मन विश्राम रहाओ प्रभ कै सिमरन गर्भ ना बसै प्रभ कै सिमरन दुख जम नसै प्रभ कै सिमरन काल पर हरै प्रभ कै सिमरन दुश्मन टरै प्रभ सिमरत कछ बिघन न लागै प्रभ कै सिमरन अनदिन जागै प्रभु कै सिमरन भौ न ब्यापै प्रभु कै सिमरन दुख न संतापै प्रभु कै सिमरन साध कै संग सर्व निदान नानक हर रंग प्रभु कै सिमरन रिद सिद्ध नौ निद प्रभु कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध प्रभु कै सिमरन जप तप पूजा प्रभु कै सिमरन बिनसै दूजा प्रभु कै सिमरन तीर्थ स्नानी प्रभु कै सिमरन दरगह मानी प्रभु कै सिमरन होए सुफला प्रभु कै सिमरन सुफल फला से सिमरह जिन्हें आप सिमराए नानक ताकै लागू पाए प्रभु का सिमरन सब ते ऊचा प्रभु कै सिमरन उदरे मूचा प्रभु कै सिमरन तृष्णा बुझै प्रभु कै सिमरन सब कुछ सुझै प्रभ कै सिमरन नाहीं जम त्रासा प्रभ कै सिमरन पूर्ण आसा प्रभ कै सिमरन मन की मल जाए अमृत नाम मृत माहे समाए प्रभ जी बसै साध की रसना नानक जन का दासन दसना प्रभ को सिमरै से तनवंते प्रभ को सिमरै से पतवंते प्रभ को सिमरह से जन प्रवानु प्रभ को सिमरह से पुरख प्रधानु प्रभ को सिमरह से बेमहता जे प्रभु को सिमरह श्री सर्व के राजे प्रभु को सिमरह श्री सुखवासी प्रभु को सिमरह सुधा विनाशी सिमरन ते लागे जिन्हें आप दयाला नानक जन की मंगर वाला प्रभु को सिमरह से पर उपकारी प्रभु को सिमरह तिन सद बलिहारी प्रभु को सिमरह से मुख सुहावे प्रभु को सिमरह तिन सुख बिहावे प्रभु को सिमरह तिन आत्म जीता प्रभु को सिमरह तिन निर्मल रीता प्रभु को सिमरह तिन अनंत कनेरे प्रभु को सिमरह बसै हर नेरे संत कृपा ते अनदिन जाग नानक सिमरन पूरै भाग प्रभु कै सिमरन कार्य पूरे प्रभु कै सिमरन कबू न झूरे प्रभु कै सिमरन हर गुण बानी प्रभु कै सिमरन सह समानी प्रभु कै सिमरन निचल आसन प्रभु कै सिमरन कमल विगासन प्रभ कै सिमरन अनहद चुनकार सुख प्रभ सिमरन कंत न पार सिमरै से जन जिन को प्रभ माया नानक तिन जन सर नहीं पाया हर सिमरन कर भगत प्रगटाए हर सिमरन लग भेद उपाय हर सिमरन पहे सिर जति दाते हर सिमरन नीचों कुंट जाते हर सिमरन तारी सब तरना सिमर सिमर हर कारण करना हर सिमरन की सगल कारा हर सिमरन में आप निरंकारा कर कृपा जिसे आप बुझाया नानक गुरमुख हर सिमरन तिन

साधक संग नाही हो ताप, साधक संग तजै सब आप। आपे जाने साध बढ़ाई, नानक साध प्रभु बने आई। साधक संग न कबू तावे, साधक संग सदा सुख पावे। साध संग बस्त गो चरल है, साधु कै संग जर सह। साधक संग बसै तान उच्चै, साधु कै संग महल पहुँचै। साधक संग दृढ़ सब धर्म, साधक संग केवल पार ब्रह्म। साधक संग पाए नाम निदान, नानक साधु कै कुर्बान। साधक संग सब कुल उधारै, साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तारै। साधु कै संग सो धन पावै, जिस धन ते सब को बरसावै। साध संग धर्म राय करे सेवा, साधक संग सोभा सुर देवा। साधु कै संग पाप लायन, साध संग अमृत गुण गायन। साधक संग श्रव थान गामु, नानक साधक संग सफल जनामु। साधक संग नहीं कचकाल, दर्शन भेटत होत निहाल। साधक संग कुलुकत हरै, साधक संग नरक पर हरै। साधक संग इहां उहां सुहेला, साध संग बिछड़त हर मेला। जो इच्छा सोई फल पावै, साधक संग न बिरथा जावै। पार ब्रह्म साध रित बसै, नानक उदरै साध सुनर सै। साधक संग सुनो हर नाओ, साध संग हर के गुण गाओ। साधक संग न मन ते बिसरै, साध संग सर पर निस्तरै। साधक संग लग्या प्रभ मीठा, साधु कै संग घट घट डीठा। साध संग पै आज्ञाकारी, साध संगत पई हमारी। साधक संग मिटे सब रोग, नानक साध भेटे संजोग। साध की महिमा वेद न जानै, जीता सुनै तीता बख्यानै। साध की उपमा ते गुण ते दूर, साध की उपमा रही भरपूर। साध की शोभा का नाही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत। साध की शोभा ऊंच ते ऊंची, साध की शोभा मूच ते मूची। साध की शोभा साध बने आई, नानक साध प्रभ भेद न पाई। श्लोक मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेखै कस बिन कोए। नानक के लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए अष्टपदी। ब्रह्म ज्ञानी सदा निरलेप, जैसे जल में कमल लेप। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख, जैसे सूर सर्व को सोख। ब्रह्म ज्ञानी कै दृष्ट समान, जैसे राज रंग को लागै तुल पवानु। ब्रह्म ज्ञानी कै धीरज एक, ज्यों बसदा को खोदै को चंदन लेप। ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाओ, नानक ज्यों पावक का सह सुभाओ। ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला, जैसे मैल न लागै जला। ब्रह्म ज्ञानी कै मन होए प्रगास, जैसे तारु पर आकाश। ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र शत्रु समान, ब्रह्म ज्ञानी कै नाही अभिमान। ब्रह्म ज्ञानी ऊंच ते ऊंचा, मने अपना है सब ते नीचा। ब्रह्म ज्ञानी से जन पए, नानक जिन प्रव्याप करे। ब्रह्म ज्ञानी सगल किरीना, तुम रस ब्रह्म ज्ञानी चीना। ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया, ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न भया। ब्रह्म ज्ञानी सदा सुंदरसी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी। ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। ब्रह्म ज्ञानी को प्रयास, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी कह गरीबी समाह, ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार माह। ब्रह्म ज्ञानी कहना ही धंधा, ब्रह्म ज्ञानी लेता होत बंदा। ब्रह्म ज्ञानी कह हुए सुफला, ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला। ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधारु, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसारु। ब्रह्म ज्ञानी कै कै रंग, ब्रह्म ज्ञानी कै वसै प्रसंग। ब्रह्म ज्ञानी कै नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी कै नाम परवार। ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्म ज्ञानी अहंग बुद्ध त्यागत। ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कै घर सदानंद। ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का वेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संग हिता। ब्रह्म ज्ञानी कै हुए अचिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत। ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रव्याप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप। ब्रह्म ज्ञानी का दर्श पट भागी पाइये, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइये। ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर,
नानक ब्रह्म ज्ञानी आ परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहे, ब्रह्म ज्ञानी के सगल मन माहे, ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश, ब्रह्म ज्ञानी का कथिया ना जाए अदाख्यर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर, ब्रह्म ज्ञानी कीमत कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने, ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पारु, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार, ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता, ब्रह्म ज्ञानी साध जीवै नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विदाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सगल कारु, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी, श्लोक उर धारै जो अंतरनाम, सर्व में पेखै भगवान, निमक निमक ठाकुर नमस्कार, नानक अपर सगल निस्तार अष्टपदी। मिथ्या नाही रसना परस, मन में प्रीत निरंजन दर्स, पर त्रै रूप न भेखै नेत्र, साध के टैल संसंग हेत, कर न सुने काहू की निंदा, सब ते जाने आपस को मंदा, गुर प्रसाद विख्या पर हरे, मन की वासना मन ते टरै, इंद्री जित पंच दोख ते रहत, नानक कोट म देखो वैसा परस, वै सुनो सो जी सुपर सो प्रसन्न, बिशन की माया ते हुए भिन्न, कर्म करत हु वै नि कर्म, तिस बैसनु का निर्मल धर्म, काहू फल की इच्छा नहीं बाचै, केवल भगत कीर्तन संग राचै, मन तन अंतर सिमरन गोपाल, सब ऊपर हुवत कृपाल, आप दृढ़ रह नाम जपावै, नानको बैसनु परम गत पावै, भगवती भगवंत भगत का रंग, सगल त्याग दुष्ट का संग, मन ते बिनसै सगला भरम, कर पूजै सगल पार ब्रह्म, सासु पापा मल को वै, तिस भगवती की मत उत्तम होवै, भगवंत की टहल करै नित नीत, मन तन अर्पै बिशन परीत, हर के चरण हृदय बसावै, नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावै, सो पंडित जो मन प्रबुदै, राम नाम आत्मै सोदै, राम नाम सार रस पीवै, उस पंडित कै बुदे जग जीवै, हर की कथा हृदय बसावै, सो पंडित फिर जो न आवै, वेद प्राण सिमरत बूझै मूल, सुखम मैं जानै स्थूल चौवर, ना को देव उपदेश, नानक उस पंडित को सदा आदेश, बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, चौवर ना मैं जपै को नाम, जो जो जपै तिसकी गत होए, सासु पावै जन कोई, कर कृपा अंतर उर धारै, बस प्रेत मुक्त पात्र को तारै, सर्व लोका उगत नाम, कल्याण रूप मंगल गुण गाम, काबू जुगत कितै न पाइय धर्म, नानक तिस मिलै जिस लिखिया तुर करम, जिसके मन पार ब्रह्म का निवास, तिसका नाम सत राम दास, आत्म राम तिस नदरी आया, दास दसंतन पाए तिन पाया, सदा निकट निकट हर जान, सो दास दरगै परवान, अपने दास को आप कृपा करै, तिस दास को सब सो जी परै, सगल संगात्म दास, ऐसी जुगत नानक रामदास, प्रभु की आज्ञा तुम हितावै, जीवन मुख सो कहावै, तैसा हरक तैसा उसोग, सदानंद तै नहीं बियोग, तैसा स्वर्ण तैसी उसमाटी, तैसा मृत तैसी बिखाटी, तैसा मान तैसा विमान, तैसा रंग तैसा राजान, जो वरताई साई जुगत नानको पुर कहिए, जीवन मुक्त पार ब्रह्म के सगले ठाओ, जित जित घर राखै तैसा तिन्ना, वापे करन करावण जो प्रभावै सोई गुण हो, पसुरु आपण तरंग, लखि न जाहि पार ब्रह्म के रंग, जैसी मत दे तैसा प्रगास, पार ब्रह्म करता अविनाश, सदा सदा सदा दयाल, सिमर सिमर नानक भए निहाल, श्लोक उस्तत करे अनेक जन अंत न पारावार, नानक रचना प्रभु रची बहु विधनिक प्रकार, अष्टपदी कई कोट होए पुजारी, कई कोट आचार व्यवहारी, कई कोट भय तीर्थवासी, कई कोट वन भ्रमै उदासी, कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपिसर होते, कई कोट आत्म ध्यान धार है, कई कोट कवका विचार है, कई कोट नवतन नाम ध्यावै, नानक करते गंत न पावै, कई कोट भय अभिमानी, कई कोट अंध ज्ञानी, कई कोट कृपण कठोर, कई कोट अभिगात्म निकोर,
कई कोट पर दर्व को हिरह, कई कोट पर दुख न करह, कई कोट माया श्रमाहे, कई कोट पर देश प्रवाहे, जित जित लावो तित तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना, कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर्प उपाय, कई कोट पात्र वृख निप जाए, कई कोट पवन पानी बैसंतर, कई कोट देश भूमंडल, कई कोट शशिर सूर्ण खेतर, कई कोट देव दानव इंद्र सिर छतर, सगल समग्री अपने सूत तार है, नानक जिस जिस भाव है तिस तिस निस्तार है, कई कोट राजस्ताम सातक, कई कोट वेद प्राण सिमृत अर्शास्त्र, कई कोट कीर्तन समुद, कई कोट नाना प्रकार जंत, कई कोट किए चिरजीवे, कई कोट गिरिमेश्वर थीवे, कई कोट जकी नर पिशाच, कई कोट भूत प्रे सुकर मिर्गाच, सब ते नीरे सब हुते दूर, नानका फलिप्त रहा भरपूर, कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक सुर्ग निवासी, कई कोट जन्म जीवे मरे, कई कोट भोजुनि फिरे, कई कोट बैठत ही खाहे, कई कोट का लह थक वाहे, कई कोट किए तनवंत, कई कोट माया मह चिंत, जह जय भाणा तह तह राखे, नानक सब किछ प्रभु कै हाथे, कई कोट भय वैरागी, राम नाम सतिन लिवलागी, कई कोट प्रभु को खोजंते, आत्म में पार ब्रह्म लहंते, कई कोट दर्शन प्रभ्यास, तिन को मिल्यो प्रभु विनाश, कई कोट मांगे सत्संग, पार ब्रह्म तिन लागा रंग, जिन को होय आप सु प्रसन्न, नानक दे जन सदा धन धन, कई कोट खाणी अरखंड, कई कोट आकाश ब्रह्मंड, कई कोट होय अवतार, कई जूत गिनो विस्तार, कई बार पसरे उपासार, सदा सदा के कंकार, कई कोट कीने बहुपात, प्रभते हुए ब्रह्मा समात, ताक अंत न जाने कोई, आपे आप नानक प्रभ सोए, कई कोट पार ब्रह्म के दास, तिन हो तत्म प्रगास, कई कोट तत् के बेते सदा निहारे को नेत्रे, कई कोट नाम रस पीवे, अमर भय सत सद ही जीवे, कई कोट नाम गुण गावे, आत्मरा सुख सह समावे, अपने जन को साथ साथ सुमारी, नानक कोई परमेश्वर के प्यारे, श्लोक करण कारण प्रभे कह, दूसर नाहीं कोई, नानक तिस बलिहार ने, जल थल महील सोय अष्टपदी, करण करावन करने जोग, जो तिस पावे सोई होग, किन मैं थाप थप अनहारा, तने किच पारा वारा, हुक्मे धार धर रहावै, हुक्मे उपजे हुक्म समावै, हुक्मे ऊच नीच व्यवहार, हुक्मे अनेक रंग प्रकार, कर कर देखे अपनी वडियाई, नानक समय रहा समाई, प्रभावै मानुगत पावै, प्रभावै ता पात्र तरावै, प्रभावै बिन शास्त्र राखै, प्रभावै ता हर गुण भाकै, प्रभावै ता पथ सुधारै, आप करै अपन विचारै, दोहां सिरां काप स्वामी, खेलै विकसै अंतर जामी, जो पावै सो कार करावै, नानक दृष्टि अवर न आवै, कहु मानुख ते क्या होए आवै, जो तिस पावै सोई करावै, इसके हाथ होए था सब किछ ले, जो तिस पावै सोई करे, अन जानत विख्या मैं रचै, जे जानत अपना पछै, भरमे भूला दै तिस्तावै, निमकमा चार कुंट फिरियावै, कर कृपा जिस अपनी भगत दे, नानक तेजन ना मिले, किन मैं नीच कीट को राज, बार ब्रह्म गरीब निवास, जाका दृष्ट कछु न आवै, तिस तत्काल दा दिस प्रगटावै, जाको अपनी करै बख्शीश, ताका लेखा न गणै जगदीश, जियो पिंड सब तिस की रास, कट कट पूर्ण ब्रह्म प्रगास, अपनी बनता बनाई, नानक जीवै देख बढ़ाई, इसका वरना ही सहात, करण करावन सर्व खुनाथ, आज्ञाकारी बपरा जियो, जो तिस पावै सोई गुण थियो, कबहू ऊच नीच में बसै, कबहू सोग हर कटंग हसै, कबहू निंद छिंद व्यवहार, कबहू आकाश बयाल, कबहू बीता ब्रह्म विचार, नानका मिला वनहार, कबहू निरत करै बपार, कबहू सोए रह दिन रात, कबू माँ क्रोध विकराल, कबू सर्व की हो तरवाल, कबू होए वह बड़ राजा, कबू भिखारी नीच का साजा, कबू अपकीरत में आवै, कबू भला भला कहावै, जो प्रवरा कहते वही रह, गुर प्रसाद नानक सच कह, कबू होए पंडित करे बख्यान, कबू मोन धारी लावै ध्यान, कबू तट तीर्थ स्नान, कबू सिद्ध साधक मुख ज्ञान, कबू कीट हस्त तंग जी, यानिक जुन पर मैं प्रमी आव, नाना रूप जो स्वागी दिखावै, जो प्रभावै तिवै नचावै, जो तिस पावै सोई होए, नानक दूजा वर न कोए, कबू सा संगत पावै, उस स्थान ते बहु न आवै, अंतर होए ज्ञान प्रगास, उस स्थान कर नहीं विनाश,
मंत्र नाम रतिक रंग सदा बसै पार ब्रह्म कै संग ज्यों जल में जल आए कटाना त्यों ज्योति सुन जो समाना मिट गए गवन पाए विसराम नानक प्रभ कै सदगुरबान श्लोक सुखी बसै मस्कीनी आया पुनिवार तले बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले अष्टपदी जिसके अंतराज अभिमानु सो नरक पाती होवत स्वान जो जाने मैं जो बनवंत सो होवत विष्टा का जंत आपस को करवंत कहा वह जन्म मरै बो जोन प्रभावै धन भूमिका जो करे गुमान सो मूर्ख अंधा ज्ञान कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावै नानक यहाँ मुक्त आगे सुख पावै धनवंता हो कर गर्भावै

पूछते कछ होए तब इसको सुख ना ही कोई। जब जाने मैं किछ करता तब लगर्व जोन मैं फिरता, जब तारे को बैरी मीत तब लगने चन ना ही चीत। जब लग मोह मगन संग भाए तब लग धर्म राय दे सजाए, प्रभ कृपा ते बंधन टूटे गुर प्रसाद नानको छूटे। सहस खटे लग कोट तावै तृप्त न आवै, माया पाछै पावै अनिक भोग विख्या के करै। न तृप्त आवै कब कमरै बिना संतोख नहीं को राजै, सुपन मनोरथ वृथे सब काजै। नाम रंग सर्व सुख होए बड़ भागी किसै प्राप्त होए। करण करावन आपे आप सदा सदा नानक कर जाप, करण करावन करण हार इसके हाथ कहाँ विचार। जैसी दृष्ट करे तैसा होए आपे आप प्रभ सोए, जो किचकिनो सो अपने रंग सब थे दूर सबू कै संग। बूझे देखे करे विवेक अपहे कपहे अनेक, मरे न बिनसै आवै न जाए, नानक सत ही रह समाए। आप उपदेशै समझै आप आपे रचिया सब कै साथ, आप किनू अपन विस्तार सब कछ उसका करण हार। उसते भिन कहो किछ होए थान थनंतर एक कै सोए, अपने चलताप करने हार। कौत करै रंग आपार मन मैं मन अपने माही, नानक कीमत कह न जाए। सर्व सत सत सत प्रभ स्वामी, गुर प्रसाद किन्ने बख्यानी, सच सच सत सब कीना कोठ मते किन्ने बिरलै चीना। भला भला भला तेरा रूप अत सुंदर अपार अनूप, निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी, घट घट सुनी श्रवण बख्यानी। पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत, नाम जपै नानक मन प्रीत। श्लोक संत शरण जो जन परै, सो जन उदर नहार। संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार। अष्टपदी संत कै दुखन आर जा कटै, संत कै दुखन जमते नहीं छुट्टै। संत कै दुखन सुख सब जाए, संत कै दुखन नरक मैं पाए। संत कै दुखन मत हुए मलीन, संत कै दुखन शोभा तेहीन। संत के हथे को रखै न कोई, संत कै दुखन थान भ्रष्ट हुए। संत कृपाल कृपा जी करै, नानक संत संग निंदक भीतरै। संत के दुखन ते मुख पवै, संतन कै दुखन काग जून लवै। संतन कै दुखन सर्प जून पाए, संत कै दुखन त्रिगत जून किरमाए। संतन कै दुखन तृष्णा में जले, संत कै दुखन सब को चले। संत कै दुखन ते सब जाए, संत कै दुखन नीच नी जाए। संत दुखी का था को नाई, नानक संत पावै थाउ पीगत पाए। संत का निंदक मात ताई, संत का निंदक किंटिक न पाए। संत का निंदक महत आराओ, संत का निंदक परमेश्वर माराओ। संत का निंदक राज तेहीन, संत का निंदक दुखियार दीन। संत के निंदक सर्व रोग, संत के निंदक सदा बिजोग। संत के निंदा दोख में दोख, नानक संत भावै तो उसका भी होए मोख। संत का दुखी सदा पवित, संत का दुखी किसै का नहीं मित। संत के दुखी को डान लागे, संत के दुखी को सब त्यागै। संत का दुखी माँ अहंकारी, संत का दुखी सदा विकारी। संत का दुखी जन में मरै, संत की दुख ना सुख ते ठरै। संत के दुखी को ना ही टाओ, नान संत पावै ता लय मिलाए। संत का दुखी अद्वेष ते टूटै, संत का दुखी कित काज न पहुँचै। संत के दुखी को ध्यान परमाई है, संत का दुखी उजड़ भाई है। संत का दुखी अंतर ते थोथा, जो सास बिना मृतक की लोथा। संत के दुखी की जड़ किछ नाही, अपन बीजा पे ही खाही। संत के दुखी को वरण राखन हार, नान संत भावै ता लै उबार। संत का दुखियों बिल लाए, ज्यो जल बिहून मछली तड़फड़ाए। संत का दुखी भूखा नहीं राजै, ज्यो पावक इंदन नहीं त्रापै। संत का दुखी छुट्टै अकेला, ज्यो बुआड़ दिल के तमाहे दोहेला। संत का दुखी धर्म ते रहत, संत का दुखी सद मिथ्या कहत। किरत निंदक का तुर ही भया, नानक ज्योतिष भावै सोई थया। संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए, संत के दुखी को दरगह मिलै सजाए। संत का दुखी सदा सहकाई है, संत का दुखी न मरै न जीवाई है। संत के दुखी की पुजै नयासा, संत का दुखी उठ चलै निराशा। संत के दुख न तृष्टै कोई, जैसा भावै तैसा कोई होए। भया किरत न मिटै कोई, नानक जाने सच्चा सोए। सब घट तिसक्यो करने हार, सदा सदा तिसको नमस्कार। प्रभ की उस्तुत करो दिन रात, तिसै त्याहु सास विरास। सब कछु वर्तै तिसका किया, जैसा करे तैसा कोथिया। अपना खेलाप करने हार, दूसर कौन कहे विचार। जिसनु कृपा करे।

का दाता आठ पहर पार ब्रह्म रंग राता ब्रह्म जन जन में पार ब्रह्म एक कहे आप नहीं कच परम सह से आन पलया ना जाइये नानक सा गुरु बड़ भागी पाइये सफल दर्शन पेखत पुनीत परसत चरण गाते निर्मल रीत पेट दसंग राम गुण रवे पार ब्रह्म की दर गह गवे सुन कर वचन करण आघाने मन संतोख आत्म पत्याने पूरा गुर अखियो जा का मंत्र अमृत दृष्ट पेख है हुए संत गुण बेअंत कीमत नहीं पाए नानक जिस पा है तिस लय मिलाए जे पाए कुष्ठत अनेक सतपुरख पूर्ण विवेक काहू बोल न पहुंचत प्राणी अगम गोचर प्रभ निर्वाणी निराहार निर्वैर सुखदाई ताकी कीमत किन्ने न पाई अनिक भगत बंधन नित कर चरण कमल हृदय सिमरह सद बलिहारी सदगुरे अपने नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभु जपने एहो अरस पावै जन कोए अमृत पीवै अमर सोए उस पुरका नाही कदे विनाश जाके मन प्रगटे गुणतास आठ पहर हर का नाम ले सचु बदे शिव कौ दे मुह माया कै संग न लेप मन मह राखै हर हर एक अंधकार दीप परगासे नानक भरम मोह दुख तहते नासे तपत माहे ठाट वरताई आनंद भया दुख नाठे भाई जन्म मरण के मिटे अंदेसे साधु के पूरन उपदेसे पौ चुका निरपौ होए बसे सगल ब्याध मन ते खै नसे जिसका सातिन कृपा तारी साध संग जप नाम मुरारी थित पाई चुके भ्रम गवन सुन नानक हर हर जस रवन निर्गुण आप सरगुण पियो ही कला तार जिन सगली मोही अपने चरित प्रभ आप बनाए अपनी कीमत आपे पाए हर बिट दूजा नाही कोई सर्व निरंतर एको सोए ओत पोत रव्या रूप रंग पहे प्रगास साध कै संग रच रचना अपनी कल तारी

सास प्रभु तुम्हें त्यागूं, चरण कमल स्यों लागे प्रीत, भगत करूं प्रभु की नितनीत। एक ओट एको आधार, नानक मागे नाम प्रभु सारु, प्रभु की दृष्ट महा सुख होए। हार रस पावे बिरला कोए, जिन चाखिया से जन तृपताने, पूर्ण पुरख नहीं डोलाने। सुपार भरे प्रेम रस रंग, उपजै चाओ साध कै संग, परे सरनान सब त्याग, अंतर प्रगासन दिन लिव लाग। बड़भागी जपया प्रभु सोए, नानक नाम रत्ते सुख हुए। सेव की मनसा पूरी भई, सतगुर ते निर्मल मत लई, जन को प्रभु होयो दयालु, सेवक कीनो सदा निहाल। बंधन काट मुकत जन भया, जन्म मरण दुख भ्रम गया, इच पुन्नी सरदा सपूरी, रव रहया सत्संग हजूरी, जिसका साथिन लिया मिलाए, नानक भगती नाम समाए। सो क्यों बिसरै जे काल न भानै, सो क्यों बिसरै जे की आ जानै, सो क्यों बिसरै जिन सब किछ दिया, सो क्यों बिसरै जे जीवन जिया, सो क्यों बिसरै जे अग्न मह राखै, गुर प्रसाद को बिरला लाखै, सो क्यों बिसरै जे बिखति काढ़ै, जन्म जन्म का टूटा गढ़ै, गुर पूरै तति है बुझाया, प्रभ अपना नानक जन त्याया। साजन संत कर हुए काम, आन त्याग जपहु हर नाम, सिमर सिमर सिमर सुख पावो, आप जपहु अवरह नाम जपावो। भगत भाई तरियै संसार, बिन भगती तन हो सी चार, सर्व कल्याण सुख निध नाम, गूढ़त जात पाए विश्राम, सगल दुख का होवत नासु, नानक नाम जपो गुण तासु। उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ, मन तन अंतर ही सुआओ, नित्रो पेख दर सुख होए, मन बिगसै सात चरण तोए। भगत जन कै मन तन रंग, बिरला को पावै संग, एक बस्त दी जय करमया, गुर प्रसाद नाम जप लया, ताकि उपमा कही न जाए, नानक रहया सर्व समाए। प्रभ बख्शंद दीन दयाल, भगत वच्छल सदा कृपाल, अनाथ नाथ गोबिंद गोपाल, सर्व कटा करत प्रतपाल, आद पुरुष कारण करतार, भगत जना के प्राण आधार, जो जो जपै सो हुए पुनीत, भगत भाई लावे मन हीत। हम निर्गुण यार नीच अजान, नानक तुमरी शरण पुरख भगवान, सर्व वैकुंठ मुक्त मोख पाए, एक निमक हर के गुण गाए, अनिक राज भोग बढ़ियाई, हर के नाम की कथा मन पाई, वो भोजन का फल संगीत, रसना जपती हर हर नीत, भली सुकरणी शोभा तनवंत, हिरदय बसे पूर्ण गुरमंत, साध संग प्रभ देहो निवास, सर्व सुख नानक परगास। श्लोक सारगुण निर्गुण निरंकार, सुन समाधि आप, अपन किया नानका, आपे ही फिर जाप। अष्टपदी जब कार्य कछ न दृष्टेता, पाप पुन तब कहते होता, जब तारी अपन सुन समाद, तब बैर विरोध किस संग कमात, जब इसका वर्ण चिन्ह ना जापत, तब हरख सो कहो किसह व्यापत, जब अपना पापार ब्रह्म, तब मोह कहा किस होवत परम, अपन केला वर्ती जा, नानक करने हार न दूजा, जब होवत प्रभ केवल तनी, तब बंद मुक्त कहो किस को बनी।
जब कह रगम पार तब नरक सुर को कौन उतार, जब निर्गुण प्रभु सह सुभाई तब शिव सकत कहो कित ठाई, जब आप है आप अपनी जोत धरे तब कवन निडर कवन कत डरे, अपन चलताप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार, अविनाशी सुख अपनासन तह जन्म मरण कहो कहा बिना सुन, जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जमकी त्रास कहो किसोए, जब अविगत गोचर प्रभ का तब चित्र गुप्त किच पूछत लिखा, जब नाथ निरंजन गोचर गाते तब कौन छुट्टे कौन बंधन बाधे, अपन आप आपिए चर जाओ नानक अपन रूप आपी ऊपर जाओ, जह निर्मल पुरख पुरख पत होता तह बिन मैल कहो क्या तोता, जह निरंजन निरंकार निर्वाण तह कौन कुमान कौन अभिमान, जय स्वरूप केवल जगदीश तय चल छिद्र लगत को कीश, जय ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावे तय किसे भूख कवन तृप्तावे, करण करावन करने हार नानक करते का नहीं सुमारु, जब अपनी शुभ अपन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सुत पाई, जय सर्व कलाया पह परवीन तै वेद कतेव कहा कुचीन, जब अपना पापुर तारे तो सगन अपसगन कहा विचारे, ने अपन ऊच अपना अपनेरा तह कौन ठाकुर कौन कहिए चीरा, बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद नानक अपनी गत जानो आप, जय अचल छेद भेद समाया ऊहा किसे व्यापत माया, आपस को आप है आदेश त्यो गुण का नाही प्रवेश, जय एक एक भगवंता तै कौन चिंत किस लागे चिंता, जय अपना पाप त्यारा तै कौन कथे कौन सुनने हारा, बहु बेअंत ऊच ते ऊचा नानक आपस को आप है पहुँचा, जे आप रचियो परपंच कारु त्यो गुण में किन्नु विस्तारु, पाप उनते पही कहावत को नरक को स्वर्ग बंछावत, आल जाल माया जंजाल और मैं मोह परम पै पार, दुख सुख मान अपमान अनेक प्रकार की उपख्यान, अपन खेल आप कर दिखे खेल संकोच है तो नानक कह, जय अभिगत भगत है आप जय पसरै पसार संत प्रताप, दूहू पाका आपे तनी उनकी शोभा उन्हों बनी, आपह कौतक करे अनंत चूज आपह रस भोगन निर्जोग, जिस भावै तिस अपना इलावै जिस भावै तिस खेल खिलावै, देश मा अथाह अगंत्य तू लै ज्यों बुलावहु त्यों नानक दास बोलै। श्लोक जी जंत के ठाकुरा आपे वर्तन हार, नानक एको पसरिया दूजा कह दृष्टारु, अष्टपदी आप कथे आप सुनने हारु, आपे का विस्तार जात इस भावै ता सृष्ट उपाय, अपने भाणे लय समाये तुम ते भिन्न नहीं किछ होए, अपन सू सब जगत पुरोए, जाकु प्रभ जीव आप बुझाए सच नाम सोई जन पाए, सो समदर्शी तत् का वेता नानक सगल सृष्ट का जीता, जी जंतर सबता कह हाथ दीन दयाल नाथ को नाथ, जिस रखे तिस कोई न मारे सो मुआ जिस मनो बिसारे, तिस तजवर कहा को जाए सब सिरेख निरंजन राय, जी की जुगत जा कह सब हाथ अंतर बाहर जानू साथ, गुण निदान बेअंत पारु नानक दास दा बलिहार, पूर्ण पूर रहे दयाल सब ऊपर होत कृपाल,
अपने कर्तव्य जानै आप अंतर जामी रहो व्या प्रतपालै जीन बहु भात जो जो रचियो सो तिसै तिहात जिस भावै तिस लय मिलाए भगत करै हर के गुण गाए मन अंतर विश्वास कर मानिया करनहार नानक इक जानिया जन लागा हरि कै नाए जिसकी आसन बिरति जाए सेवको सेवा बन आए हुकम बूझ परम पद पाई इसते उपर नहीं विचार जाकै मन बसिया निरंकार बंधन तोर भय निर्वैरन दिन पूजै गुर के पैर ये लोक सुखी पर लोक सुहेले नानक हर प्रभ आपै मेले सा संग मिल करो आनंद गुण गावो प्रभ परमानंद राम नाम तत करो विचार दुर्लभ देह का करो उदार अमृत वचनर के गुण गाओ प्राण तरन का यह सुहाओ आठ पैर प्रभेखो नीरा मिटै ज्ञान बिन सय अंधेरा सुनो पदे सिर तैब सावो मन इच्छे नानक फल पावो हालत पलत दोहल्यो सुवारो राम नाम अंतर उर धारो पूरे गुर की पूरी दीखिया जिस मन बसै ते साच परिखिया मंत्र नाम जपो लिवलाए दुख दर्द मन ते पहु जाए सच व्यापार करो व्यापारी दरगह निबह केप तुम्हारी एका टेक रखो मन माहे नानक बहुर नया वह जाए जिसते दूर कहा को जाए उपरै रखन हार त्याए निरभउ जपै सगल भउ मिटै प्रभ कृपा ते प्राणी छुटै जिस प्रभ राखै तिस नाहि दुख नाम जपत मन होवत सुख चिंता जाए मिटै अहंकार तिस जन को कोई न पहुँचन हार सिर उपर ठाडा गुर सूरा नानक ताके कारज पूरा मत पूरी अमर जा की दृष्ट दर्शन पेखत उदरत श्रिष्ट चरण कमल जा के अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप धन सेवा सेवक परवान अंतर जामी पुरख प्रधान जिस मन बसै सुहोत निहाल ताकै निकट नयावत काल अमर भय अमरा पद पाया साध संग नानक हर त्याया श्लोक ज्ञान

सु अष्टपदी संत संगंत्र प्रवडीठा नाम प्रभु का लागा मीठा सगुर समग्री एक कट माही अनिक रंग नाना दृष्टा ही नौ नित अमृत प्रभु का नाम देही महेश का विश्राम सुन समाधन हथ्य नाद कह न जाई चर्च विस्माद तीन देखिया जिसाब दिखाए नानक तीजन सो जी पाए सो अंतर सो बार अनंत कट कट व्याप रहा भगवंत तरन माहे आकाश पयाल सर्वलोक पूर्ण प्रतपाल बंथिन पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आज्ञा तैसा कर्म पावन पानी बैसन तर माही चार कुंड दा दिशे सुमाही तिस्ते पे नहीं कुठाओ गुरु प्रसाद नानक सुखाओ वेद प्राण सिमृत मैं देख ससियर सूर्य खेत्र मैं एक वाणी प्रभ की सबको बोल है आप डोल न कब हूं डोल है सर्व कला कर खेल है खेल मोल न पाई है गुण है मोल सर्व ज्योत मैं जा की ज्योत धार गुर स्वामी ओत पोत गुरु प्रसाद परम का नासु नानक थिन मैं एहो विश्वास संत जना का पिखण सब ब्रह्म संत जना कै हृदय सब धर्म संत जना सुन सुबचन सर्वव्यापी राम संग्रचन जिन जाता तिसकी ये रहत सत बचन साधु सब कहत जो जो हुए सोई सुख माने करण करावन हार प्रभु जाने अंतर बसे बाहर पियो ही नानक दर्शन देख सब मोही आप सत किया सब सत तिस प्रभति सगली उत्पत तिस भावै ता करे विस्तार तिस भावै ता एकंकार अनिक कला लखी नह जाए जिस भावै तिस लय मिलाए कवन निकट कवन कहिए दूर आपे आपा भरपूर अंतरगत जिस आप जनाए नानक ते जनिया बुझाए सर्वभूतावर तारा सर्व नैना पिखन हारा सगल समग्री जा का तना अपन जासाप ही सुनाओ आवन जाने खेल बनाया आज्ञाकारी की नी माया सब कह मद अलिप्त तो रहे जो कुछ कहना सो आपे कहे आज्ञा आवे आज्ञा जाए नानक जा पावे ता लय समाए इसते हुए सुना ही बुरा पूरे कहो किने कछ कराओ आप ला कर तू तकनीकी आपे जाने अपने जी की आप साच धारी सब साच ओत भूत अपन संगराच ताकि गतमित कही न जाए दूसर होए ता सो जी पाए तिसका किया सब परवान गुर प्रसाद नानक हो जानू जो जाने तिस दा सुख होए आप मिलाए ले प्रभु सोए ओ तनवंत कुलवंत पतवंत जीवन मुख जिस हृदय भगवंत धन धन धन जन आया जिस प्रसाद सब जगत राया जन आवन कह सुआउ जन कह संचित आवै नाउ आप मुकत मुकत करे संसार नानक तिस जन को सदा नमस्कार श्लोक पूरा प्रभ आराध्या पूरा जाका नाउ नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ अष्टपदी पूरे गुर का सुनो उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख साथ साथ सिमरो गोविंद मन अंतर की उतरे छिंद हास नित्या गुत रंग संत जना की धूल मन मांग आप छोड़ बेनती करो साध संगा गुण सागर तरो हर तन के पर लेहो भंडार नानक गुर पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद साध संग पज परमानंद नरक निवार उधारो जियो गुण गोविंद अमृत रस पियो चिचित हो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दमोदर दीन दयाल दुख भंजन पूरन कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का एह आधार उत्तम श्लोक साध के बचन अमलीक लाल हे रतन सुनत कमावत हो तो उधार आप तरह लोक निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लागा हर रंग जय जय शब्द नाहत वाजय सुन सुनंत करे प्रभ गाजय प्रगटे गोपाल महांत कह माथे नानक उदरे तिन कह साथे शरण जोग सुन सरणी आए कर कृपा प्रभाप मिलाए मिट गए बैर भई सब रेन अमृत नाम साध संग लैन सुप्रसन्न भय गुरुदेव पूरन होई सेव की सेव आल जंजाल बिकार ते रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रभु धारी नानक निभे खेप हमारी प्रभ की उस्तत करो संत मीत सावधान एकाग्रचित
सुखमनी सहज गोविंद गुना, जिस मन बसै सोहोत निदान, सर्व इच्छा ताकी पूर्ण होए, प्रधान पुरख प्रगट सब लोए, सब ते उच पाए स्थान, गौर न हो गया उन जान, हर तन खाट चले जन सोए, नानक जिसे प्राप्त होए, खेम शांत रित नव निद, बुद्ध ज्ञान सर्व तय सिद्ध, विद्या तप जोग प्रत्यान, ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान, चार पदार्थ कमल प्रकाश, सब कह मद सगल त्युदा, सुंदर चतुर तत् का बीता, साम दर्शी एक दृष्टिता, ए फल तिस जन कै मुख भने, गुरु नानक नाम बचन मन सुनी, इहो निदान जपै मन कोई, सब जुग में ताकी गत होए, गुण गोविंद नाम धुन बाणी, सिमृत शास्त्र वेद बखाणी, सगल मतांत केवल हर नाम, गोविंद भगत कै मन विश्राम, कोट अपराध सत्संग मिटै, संत कृपा ते जमते छुट्टै, जाकै मस्त करम प्रपाए, सात शरण नानक ते आए, जिस मन बसै सुनै लाए प्रीत, तिस जन आवै हर प्रभ जीत, जन्म मरण ताका दुख निवारै, दुर्लभ दी तत्काल उदार, निर्मल शोभा अमृता की बानी, एक नाम मन माहि समानी,

नाम सुखमणि, सुखमणि सुखमृत प्रवनाम, भगत जना कै मन बिसराम। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

मुख उजले कीर्ति छुट्टी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, श्री वाहिगुरु जी की फतेह।

ಭೂಪ ಭೂಪೆ ನಮೋ ದಾನ ದಾನೇ ನಮೋ ಮಾನ ಮಾನೇ ನಮೋ ರೋಗ ರೋಗೇ ನಮಸ್ತಂಗೇ ಸುನಾನಂ ನಮೋ ಮಂತ್ರ ಮಂತ್ರಂ ನಮೋ ಜಂತ್ರ ಜಂತ್ರಂ ನಮೋ ಎಷ್ಟ ಎಷ್ಟೇ ನಮೋ ತಂತ್ರ ತಂತ್ರಂ ಸದಾ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸರ್ವಂ ಪ್ರಣಾಸಿ ಅನುಪೇಯ ರೂಪೇ ಸಮಸ್ತ ನಿವಾಸಿ ಸದಾ ಸಿದ್ಧದಾ ಬುದ್ಧದಾ ಬಿರುದ ಕರ್ತಾ ಅಧೋ ಉರ್ದ ಅರ್ಧಂ ಅಗಂ ಓಗ ಹರ್ತಾ ಪರಂ ಪರಂ ಪರಮೇಶ್ವರಂ ಪ್ರೋಷಪಾಲಂ ಸದಾ ಸರ್ವದಾ ಸಿದ್ಧದಾತಾ ದಯಾಲಂ ಅಶೇದಿಯ ಪೇದಿಯ ನಾಮಂ ಅಕಾಮಂ ಸಮಸ್ತೋ ಪರಾಜಿ ಸಮಸ್ತಸ್ತತಾಮಂ ತೇರಾ ಜೋರ ಚಾಚರಿ ಶಾಂದ ಜಲೇ ಹೈ ತಲೇ ಹೈ ಅಪೀತ ಹೈ ಅಪೇ ಹೈ ಪ್ರಭು ಹೈ ಅಜೂ ಹೈ ಅದೇಶ ಹೈ ಅಪೇಶ ಹೈ ಭುಜಂಗ ಪ್ರಯಾತ ಶಾಂದ ಅಗಾಧೆ ಅಬಾಧೆ ಅನಂದೀ ಸ್ವರೂಪೇ ನಮೋ ಸರ್ವಮಾನೇ ಸಮಸ್ತಿ ನಿಧಾನೇ ನಮಸ್ತವಂಗ್ ನಿರ್ನಾಥೇ ನಮಸ್ತವಂಗ್ ಪ್ರಮಾಥೇ ನಮಸ್ತವಂಗ್ ಅಗಂಜೇ ನಮಸ್ತವಂಗ್ ಅಪಂಜೇ ನಮಸ್ತವಂಗ್ ಅಕಾಲೇ ನಮಸ್ತವಂಗ್ ಅಪಾಲೇ ನಮೋ ಸರ್ವದೇಶೇ ನಮೋ ಸರ್ವಭೇಸೇ ನಮೋ ರಾಜ ರಾಜೇ ನಮೋ ಸಾಜ ಸಾಜೇ ನಮೋ ಶಾಹ ಶಾಹೇ ನಮೋ ಮಾಹ ಮಾಹೇ ನಮೋ ಗೀತ ಗೀತೇ ನಮೋ ಪ್ರೀತ್ ಪ್ರೀತೇ ನಮೋ ರೋಖ ರೋಖೇ ನಮೋ ಶೋಖ ಶೋಖೇ ನಮೋ ಸರ್ವರೋಗೇ ನಮೋ ಸರ್ವಭೂಕೇ ನಮೋ ಸರ್ವಜೀತಂಗ್ ನಮೋ ಸರ್ವಪೀತಂಗ್ ನಮೋ ಸರ್ವಗಯಾನಂ ನಮೋ ಪರಮತಾನಂ ನಮೋ ಸರ್ವಮಂತ್ರಂ ನಮೋ ಸರ್ವಜಂತ್ರಂ ನಮೋ ಸರ್ವದೃಶಂ ನಮೋ ಸರ್ವಕೃಶಂ ನಮೋ ಸರ್ವರಂಗೇ ತ್ರಿಭಂಗೇ ಅನಂಗೇ ನಮೋ ಜೀವ ಜೀವಂ ನಮೋ ಬೀಜ ಬೀಜೇ ಅಖಿಜೇ ಅಪಿಜೇ ಸಮಸ್ತಂ ಪ್ರಸಿಜ್ಯೇ ಕೃಪಾಲಂ ಸರೂಪೇ ಕುಕರ್ಮಂ ಪ್ರಣಾಸಿ ಸದಾ ಸರ್ವದಾ ಹೃದ ಸಿದ್ಧಂ ನಿವಾಸಿ ಚರ್ಪಟ ಶಾಂತೋ ಅಪ್ರಸಾದ ಅಮೃತ ಕರ್ಮೇ ಅಮೃತ ಧರ್ಮೇ ಅಖಲ್ ಜೋಗೇ ಅಚಲ ಭೋಗೇ ಅಚಲ ರಾಜೇ ಅಟಲ ಸಾಜೇ ಅಖಲ್ ಕರ್ಮಂ ಅಲಖ ಕರ್ಮಂ ಸರ್ವಂ ದಾತಾ ಸರ್ವಂ ಜ್ಞಾತಾ ಸರ್ವಂ ಪಾನೇ ಸರ್ವಂ ಮಾನೇ ಸರ್ವಂ ಪ್ರಾಣಂ ಸರ್ವಂ ತ್ರಾಣಂ ಸರ್ವಂ ಭುಗ್ತಾ ಸರ್ವಂ ಜುಗ್ತಾ ಸರ್ವಂ ದೇವಂ ಸರ್ವಂ ಪೇವಂ ಸರ್ವಂ ಕಾಲೇ ಸರ್ವಂ ಪಾಲೇ ರುವಾಳ ಶಾಂತ ತ್ವ ಪ್ರಸಾದ ಆದ ರೂಪ ಅನಾದ ಮೂರ್ತ ಅಜೋನ ಪುರುಖ ಅಪಾರ ಸರ್ವಮಾನ ತ್ರಿಮಾನ ದೇವ ಅಪೇವ ಆದ ಉದಾರ ಸರ್ವಪಾಲಕ ಸರ್ವಕಾಲಕ ಸರ್ವಕೋಪೂನ ಕಾಲ ಯತ್ರ ತತ್ರ ವಿರಾಜ ಹಿ ಅವತೂತ ರೂಪ ರಿಸಾಲ ನಾಮ ಠಾಮ ನ ಜಾತ ಜಾಕರ ರೂಪ ರಂಗ ನ ರೇಖ ಆದ ಪುರುಖ ಉದಾರ ಮೂರ್ತ ಅಜೋನ ಆದ ಅಶೇಖ ದೇಶ ಔರ ನ ಪೇಸ ಜಾಕರ ರೂಪ ರೇಖ ನ ರಾಗ ಯತ್ರ ತತ್ರ ದಿಸಾ ವಿಸಾ ಹೋಯ ಫೈಲ್ಯೋ ಅನುರಾಗ ನಾಮ ಕಾಮ ಬಹೀನ ಪೇಖ ತಾಮಹೂ ನಹ ಜಾಹೇ ಸರ್ವಮಾನ ಸರ್ವತ್ರ ಮಾನ ಸದಾಯವ ಮಾನ ತತಾಹೇ ಏಕ ಮೂರ್ತ ಅನೇಕ ದರ್ಶನ ಕೀನ ರೂಪ ಅನೇಕ ಖೇಲ ಖೇಲ ಅಖೇಲ ಖೇಲನ ಅಂತ ಕೋ ಫಿರ ಏಕ ದೇವ ಪೇವ ನ ಜಾನಹಿ ಜಿಹ ಬೇದ ಔರ ಕತೇವ ರೂಪ ರಂಗ ನ ಜಾತ ಪಾತ ಸೋ ಜಾನೈ ಕೇಹ ಜೇಬ ತಾತ ಮಾತ ನ ಜಾತ ಜಾಕರ ಜನ ಮರಣ ಬಹೀನ ಚಕ್ರ ಬಕ್ಕರ ಫಿರ ಚತ್ರ ಚಕ್ ಮಾನೈ ಪುರತೀನ ಲೋಕ ಚೌದಾಹ ಕೇ ಬಿಖೈ ಜಗ ಜಾಪಹಿ ಜಿಹ ಜಾಪ ಆದ ದೇವ ಅನಾದ ಮೂರತ ಥಾಪ್ಯೋ ಸಬೈ ಜಿಹ ಥಾಪ ಪರಮ ರೂಪ ಪುನೀತ ಮೂರತ ಪೂರ್ಣ ಪುರುಖ ಅಪಾರ ಸರ್ವಿಸ್ವೃತ್ಯೋ ಸ್ವಯಂಭವ ಗಡನ ಪಂಜನ ಹಾರ ಕಾಲಹೀನ ಕಲಾ ಸಂಯುಗ್ತ ಅಕಾಲ ಪುರುಖ ಆದೇಶ ಧರ್ಮ ತಾಮ ಸೋ ಪರಮ ರಹತ ಅಪೂತ ಅಲಖ ಅಪೇಶ ಅಂಗ ರಾಗ ನ ರಂಗ ಜಾ ಕಹ ಜಾತ ಪಾತ ನಾಮ ಗರ್ಭ ಗಂಜನ ದುಷ್ಟ ಪಂಜನ ಮುಕ್ತ ದಾಯಕ ಕಾಮ ಆಪ ರೂಪ ಅಮೇಕ ಅನ ಉಸ್ತತ ಏಕ ಪುರುಖ ಅವತೂತ ಗರ್ಭಗಂಜನ ಸರ್ವ ಪಂಜನ ಆದ ರೂಪ ಅಸೂತ ಅಂಗಹೀನ ಅಪಂಗ ಅನಾತಮ ಏಕ ಪುರುಖ ಅಪಾರ ಸರ್ವಲಾಯಕ ಸರ್ವಕಾಯಕ ಸರ್ವಕೋ ಪ್ರಾಪ ಪಾರ ಸರ್ವಗಂತ ಸರ್ವಹಂತ ಸರ್ವತೇ ಅನಪೇಖ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ನ ಜಾನಹಿ ಜಿಹ ರೂಪ ರಂಗ ಅರ ರೇಖ ಪರಮ ಭೇದ ಪುರಾಣ ಜಾ ಕಹ ನೇತ ಪಾಕತ ನೇತ ಕೋಟ ಸಿಮ್ರತ ಪುರಾಣ ಶಾಸ್ತ್ರ ನ ಆವಹಿ ವಹ ಚೇತ ಮಧುಭಾರ ಶಾಂತ ತ್ವ ಪ್ರಸಾದ ಗುಣಗನ ಉದಾರ ಮಹಿಮಾ ಅಪಾರ ಆಸನ ಅಪಂಗ ಉಪಮಾ ಅನಂಗ ಅನುಪೌ ಪ್ರಕಾಶ ನಿಸದಿನ ಅನಾಶ ಅಜಾನ ಬಾಹು ಶಾಹಾನ ಶಾಹೌ ರಾಜಾನ ರಾಜ ಪಹನಾನ್ ಪಹನ ದೇವಾನ ದೇವ ಉಪಮಾ ಮಹಾನ್ ಇಂದ್ರಾನ್ ಇಂದ್ರ ಬಾಲಾನ್ ಬಾಲ ರಂಕಾನ್ ರಂಕ ಕಾಲಾನ್ ಕಾಲ ಅನುಪೂತ ಅಂಗ ಆಪಾ ಅಪಂಗ ಗತಮಿತ ಅಪಾರ ಗುಣಗನ ಉದಾರ ಮೌನಗನ ಪ್ರಣಾಮ ನಿರ್ಪಯ ನಿಕಾಮ ಅತದೂತ ಪ್ರಚಂಡ ಮಿತ ಗತ ಅಖಂಡ ಆಲಸ್ಯ ಕರ್ಮ ಅದೃಶ್ಯ ಧರ್ಮ ಸರ್ವಾ ಪ್ರಣಾಢ್ಯ ಅಂಡಡ ಬಾಡ್ಯ ಚಾಚರಿ ಶಾಂತ ತ್ವ ಪ್ರಸಾದ ಗೋವಿಂದೇ ಮುಕಂದೇ ಉದಾರೇ ಅಪಾರೇ ಹರಿಯಂ ಕರಿಯಂ ನಿರ್ನಾಮೇ ಆಕಾಮೇ ಭುಜಂಗ ಪ್ರಯಾತ ಶಾಂತ
చతుర్చక్రకర్త చతుర్చక్రహర్త చతుర్చక్రదానే చతుర్చక్రజానే చతుర్చక్రవర్తి చతుర్చక్రపర్తి చతుర్చక్రపాలే చతుర్చక్రకాలే చతుర్చక్రపాసే చతుర్చక్రవాసే చతుర్చక్రమాన్య చతుర్చక్రదాన్య చాచరీ షంద న సత్రయ న మిత్రయ న పరమం న పిత్రయ న కర్మం న కాయ అజన్మం అజాయ న చిత్రయ న మిత్రయ పరిహయ పవిత్రయ ప్రతిశయ ఆదిశయ అదృశయ అకృశయ భగవతి షంద త్వ ప్రసాద కాథతే के आशेज देस है के अभिज पिस है के अगंज करम है के अपंज भरम है के अभिज लोक है के आदित सुक है के आवतूत वर्ण है के विभूत करण है के राजंग प्रभा है के धर्मंग तुजा है के आशोक वर्ण है के सर्वा आवरण है के जगतंग्रति है के शत्रंग क्षत्रि है के ब्रह्मंग स्वरूप है के अनुपाओ अनूप है के आद अदेव है के आप अपेव है के चित्रंग बहिने के एक है अधीन है के रोजी रजा कह रही मेरे हाक है के पाक बेऐब है के गय बोल गैब है के अफूल गुनाह है के साहन साह है के कारण कुनेंद है के रोजी दहेंद है के राज कर रहीम है के कर्मंग करीम है के सर्वंग कली है के सर्वंग दली है के सर्वत्र मान्य है के सर्वत्र दान्य है के सर्वत्र गौण्य है के सर्वत्र पौण्य है के सर्वत्र देशाय के सर्वत्र पेशाय के सर्वत्र राजाय के सर्वत्र साजाय के सर्वत्र दीनय के सर्वत्र लीनय के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाहो के सर्वत्र देशाय के सर्वत्र पेशाय के सर्वत्र कालय के सर्वत्र पालय के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काजय के सर्वत्र राजय के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र पुख है के सर्वत्र प्राणय के सर्वत्र प्राणय के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र मान्य है सदैव प्रधान्य है के सर्वत्र जाप्य है के सर्वत्र थाप्य है के सर्वत्र पान्य के सर्वत्र मान्य के सर्वत्र इंद्राय के सर्वत्र चंद्राय के सर्वं काली मैं के परमं फाही मैं के आकल अला मैं के साहिब कला मैं के हुसनल वजू हैं तमामल रजू हैं हमें सुलसला मैं सलीकत मुदा मैं गनीमल सिकस्त है ग्रीबुल परसत है बिलंदुल मकान है जमीनल जमान है तमीजुल तमाम है रजूअल ने धान है हरीफल अजीम है रजाइक यकीन है अनेकुल तरंग है अभेद है अपंग है अजीजुल निवाज है गनीमुल खिराज है निरुक्त स्वरूप है त्रिमुक्त विभूत है प्रभुगत प्रभा है सुजुगत सुदा है सदैव स्वरूप है अपेदी अनूप है समस्त उपराज है सदा सर्वसाज है समस्त सलाम है सदैवल अकाम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है ओवं आद रूपे अनाद स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिभर्गं त्रिबादे अगंजे अगादे शुभं सर्वभागे सुसर्वा अनुरागे त्रिपोगत स्वरूप है अशुज है अशुत है कि नरकं प्रणाश है पृथ्वील प्रवास है निरुक्त प्रभा है सदैव सदा है विभुगत स्वरूप है परजुगत अनूप है निरुक्त सदा है विभुगत प्रभा है अनोक्त स्वरूप है परजुगत अनूप है चाचरी शांत अपांग है अनंग है अपेख है अलेख है अपर्म है अकर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अभय है अपूत है अतूत है अनाश है उदास है अतंध है अबंध है अपगत है विरक्त है अनाश है प्रकाश है निचिंत है सुनिंत है अलेख है अदेख है अलेख है अपेख है अटा है अगाह है असंभ है अगम्भ है अनिल है अनाद है अनित है सुनित है अजात है अजाद है चरपट छंद त्व प्रसाद सर्वं हंता सर्वं गंता सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं जुगता सर्वं मुक्ता रसावल छंद त्व प्रसाद नमो नरक नाशे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते प्रमाथं प्रमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे नृभंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पोत्राय न पुत्राय न सत्राय न मित्राय न ताताय न माताय न जाताय न पाताय निरसाकं सरीक है अमितो अमीक है सदैवं प्रभा है अजय है अजा है भगवती शांत प्रसाद के जाहर जहूर है के हाजर हजूर है हमें सुसलाम है समस्तुल कलाम है के साहिब दिमाग है के हुसनल चराग है के कामल करीम है के राजक रहीम है के रोजी दहेंद है के राजक रहेंद है क्रीमल कुमाल है के हुसनल जमाल है
गनीमल खिराज हैं, गरीबुल निवाज हैं, हरीफुल शिकान हैं, हरासुल फिकान हैं, कलंकंग प्रणास हैं, समस्तुल निवास हैं, अगंजुल गनीम हैं, रजाइक रहीम हैं, समस्तुल जुबा हैं, के साहिब किरा हैं, के नरकंग प्रणास हैं, बहस्तुल निवास हैं, के सरबुल गवन हैं, हमेशुल रवन हैं, तमामुल तमीज हैं, समस्तुल अजीज हैं, परम परम ईस हैं, समस्तुल अदीस हैं, अदेसुल अलेख हैं, हमेशुल अपेख हैं, जमीनल जमा हैं, अमीकुल इमा हैं, क्रीमुल कमाल हैं, के जोरत जमाल हैं, के अचलंग प्रकाश हैं, के अमितो सुबास हैं, के अजब स्वरूप हैं, के अमितो विभूत हैं, के अमितो पसा हैं, के आत्म प्रभा हैं, के अचलंग अनंग है, के अमितो अपंग है, मधुभार शांत त्वा प्रसाद, मुन मन प्रणाम, गुणगन मुदाम, अरबर अगंज, हर नर प्रपंज, आन गन प्रणाम, मुन मन सलाम, हर नर अखंड, बरनर अमंड, अनुभव अनास, मुन मन प्रकाश, गुणगन प्रणाम, जल थल मुदाम, आन शेज अंग, आसन अपंग, उपमा अपार, गत मित उदार, जल थल अमंड, दिस विस अपंड, जल थल महंत, दिस विस बेअंत, अनुभव अनास, त्रित तर तुरास, आजान बाह एक सदा हो, ओंकार आद कथनी अनाद, खलखंड ख्याल, गुरबर अकाल, कर कर प्रणाम, चेत चरण नाम, अनशिज बात, आजि जिना बात, अनझंझ गात, अनरंज बात, अनठट भंडार, अनठट अपार, आडीठ कर्म अतकीठ कर्म, अनब्रण अनंत, दाता महंत, हर बोल मना शांत त्व प्रसाद, करुणालय है, अरिकाल्य है, खल खंडन है, महमंडन है, जगतेश्वर है, परमेश्वर है, कल कारण है, सर्व उबारण है, त्रित के तरण है, जाग के करण है, मन मान्य है, जाग जान्य है, सर्वं भर है, सर्वं कर है, सर्वपाश है, सर्वनाश्य है, करुणा कर है, विश्वम्ब्र है, सर्वेश्वर है, जगतेश्वर है, ब्रह्मंडस है, कालखंडस है, पारते पर है, करुणा कर है, अजपा जप है, अथपा थप है, अकृता कृत है, अमृतामृत है, अमृतामृत है, करुणा कृत है, अकृता कृत है, तरणी कृत है, अमृतेश्वर है, परमेश्वर है, अकृता कृत है, अमृतामृत है, अजबाकृत है, अमृतामृत है, नरनायक है, कालकायक है, विश्वम्ब्र है, करुणालय है, नृपनायक है, सर्व पायक है, भाव भंजन है, अरे गंजन है, रिप तापन है, जप जापन है, अकलंकृत है, सर्वाकृत है, कर्ता कर है, हरता हर है, परमात्म है, सर्वात्म है, आत्म बस है, जस के जस है, भुजंग प्रयात छंद, नमो सूरज सूरजे, नमो चंद्र चंद्रे, नमो राज राजे, नमो इंद्र इंद्रे, नमो अंधकारे, नमो तेज तेजे, नमो बृंद बृंदे, नमो बीज बीजे, नमो राजसंग तामसंग सांत रूपे, नमो परम ततंग अततंग स्वरूपे, नमो जोग जोगे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो मंत्र मंत्रे, नमो ध्यान ध्याने, नमो युद्ध युद्धे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो भोज भोजे, नमो पान पाने, नमो कलह कर्ता, नमो शांत रूपे, नमो इंद्र इंद्रे अनादं बेभूते, कलंकार रूपे अलंकार अलंके, नमो आस आसे, नमो बांक बंके, अपंगी स्वरूपे, अनंगी अनामे, त्रिपंगी त्रिकाले, अनंगी अकामे, एक अश्री शांत अजय अलय अभय अभय अभू अजु अनास अकाश, अगंज अपंज अलख अपख अकाल दयाल, अलेख अपेख अनाम अकाम अगा अठा, अनाथे प्रमाथे अजूनी अमोनी, न रागे न रंगे न रूपे न रेखे, अकर्मंग अपरमंग अगंजे अलेखे, पुजंग प्रयात छंद, नमस्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणासे, अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे, नृकामंग बेभूते समस्तुल स्वरूपे, कुकर्मंग प्रणासी सुकर्मंग बेभूते, सदा सच्चिदानंद सत्रंग प्रणासी, क्रीमल कुनिंदा समस्तुल निवासी, अजायब बेभूते गजायब गनीमे, हरियं करियं करीमुल रहीमे, चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र भुगते, स्वयं भव सुभं सर्वदा सर्वजुगते, दुकालं प्रणासी दयालं सरूपे, सदायंग संगे अपंगं बेभूते, चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र पुगते, स्वयं भव शुभं सर्वदा।

सगल समगरी तुमर सूतर तारी तुमते हो ऐसो तुमरी गात में तो तुम ही जानी नानक दास कुर्बानी। बोलो जी सतनाम श्री वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी।

करके बोले वाहे गुरु साहिब जी सतनाम वाहे गुरु साहिब जी सोही महला पहला काफी कर दसम एक ओंकार सतगुर प्रसाद मानस जन्म दुर्लभ गुरमुख पाया मन तन होए चुलंब जे सतगुर पाया चले जन्म सुवार वखर सच ले पत पाए दरबार सतगुर शब्द पै प्रहाओ मन तन सच सला साचे मन पाया लाल रता मन मनया गुर पूरा पाया हो जीवा गुण सारे अंतर तू वसें मन माहे सहजे रस रस है मूर्ख मन समझाए आँखों के तड़ा गुरमुख हर गुण गाए रंग रंगे तड़ा नित नित हृदय समाल प्रीत में अपना जे चले गुण नाल नाही दुख संतापना मन मुख परम पुलाना ना तिस रंग है मरसी होए विडाना मन तन भंग है गुर की कार कमाए लाह करयाने गुरबाणी निर्वाण शब्द पछाणिया

ताप नहीं आऊंगा। जीवन थोड़ा होवे ज्यादा होवे एक कोई भी कुछ नहीं कह सकता, पर जीवन दुखां ते कलेशां तो रहत हुंदा जे रब्बी सिफत सलाह लै के जीवन सफर करिए। भाव रब्बी सिफत सलाह करदे आ जीवन जीवीए ना, फिर दुख ते संताप नहीं व्या। मनमुख भरम भुलाना ना तिस रंग है। मन पिछे तुरन वाला जेड़ा बंदा है ना, वो भरम, भरम दा अर्थ है पटकना विच पै के, भुलाना दा अर्थ है कुराए पिया है। हुणे साडे सभना ते ये पंक्ति ढुकदी है बचन, असी भुले भी होए हां ते कुराए भी पए होए। जिहड़ा मार्ग गुरु नानक ने दसिया माफ करना, उहदे ते असी चले ही नहीं, इसलिए असी कुराए पए होए। रब सानू याद नहीं आउंदा, इसलिए रब नू असी भुलाया। परम विच असी भटकना विच पै के कुराए पए होए, ना तिस रंग है। इसलिए रब दी प्रेमा भगती दा रंग नहीं चढ़दा, क्योंकि असी कहने हैं ना जपन लई बहने चित जुड़दा ही नहीं, बाणी पढ़न लई बैठदे आ तां वी मन नहीं लगदा। इहो जे मनुखां नूं भगती दा रंग साहिब खुद गुरु नानक साहिब बचन करदे नहीं चढ़दा, नहीं चढ़दा। मरसी होए विडाणा मन तन भंग है, ऐसा बंदा निखसमा होके आत्मक मौते मर जांदा। मरसी होए विडाणा निखसम, जिदा खसम ही कोई नहीं, गुरु पीर ही कोई नहीं, ऐसा बंदा निखसमा होके मरदा आत्मक मौते। मन तन भंग है, मन करके ते तन करके और रब नालों टुटा होया। भंग दा मतलब विछड़िया, टुटा होया। गुर की कार कमाए लाहा घरे आने आ, ते जेड़े गुरु के प्यारे गुरु दे चरण शरण विच आउंदे ने ना, गुर की कार कमाए ओही गुरु दी दसी कार कमाउंदे। सानू हुण पता है गुरु केड़ी कार करन लई सानू प्रेरदा है। गुरु नानक साहिब ने करन योग कम जो विशेष श्रेष्ठ कम है ओदे प्रति उपदेश कीता है। जपो ता एको नामा अवर निराफल, नबेड़ी देता रब दा नाम जपिया कर होर सारे कम निफल। नाम जपला यही गुरु दी कार है जी। गुरु यही जपन लई प्रेरदा, होर कम सब साहिब कहिंदे व्यर्थ ने, लेकिन सब तो श्रेष्ठ कम जिंदगी दा प्रमुख कम है करते नू चेते कर जिन्हें तैनू ए जीवन बख्शिश कीता। गुर की कार कमाई, कमाउंदा होया गुरु दे बचना नू जेड़ा ए लाहा लै के अपने घर जांदा है। पर इत्थे घर आउण दी गल है, जान दी गल नहीं है। घर केड़ा है? हिरदा रूपी घर। हिरदे रूपी घर दे विच रब दी सिफत नू लै आउंदा है गुरु दी कार करदिया होया। गुरु दसी कार, गुरबाणी निर्वाण शब्द पछाणिया, गुरु दी बाणी दी बरकत नाल गुरु दे शब्द राही निर्वाण कहिंदे वासना रहत परमात्मा नू जान लिया, उन्हें पहचान लिया। अखीर विच मेरे सतगुरु सच्चे पातशाह इक अरदास करदे, गुरु प्यारे हो, गुरमुख प्यारे हो, आओ सारे मिलके अरदास करिए अपने लिए। अरदास करनी चाहिए जरूर, पर अरदास दा मतलब ही है अर्ज करनी दास बन के, दासा भाव रख के गुरु अगे अर्ज करिए। गुरु नानक साहब भी करे ने, आओ आपा भी करिए। अरदास करनी हर मनुख दा अधिकार भी है, हक भी है, करनी भी इनो चाहिए। एक नानक की अरदास, जदों भी अरदास करो इन्ने निमाणेपन विच आके करो के जिवें साहिब कर

देहे प्रभु मेरी नानक दी एक तेरे चरणा विच अरदास है। जे तुद भावसी मैं अरदास कर रहा पर जे तेनू मेरी अरदास भावे चंगी लगे जो मैं कर रहा ना ये चंगी लगे पा जाए पे मैं जो कह रहा ये तेरे चरणा दे विच ओ भावना नाल कह रहा चंगी भावना नाल ते मेरी नानक दी एक अरदास है तेरे पास जे तेनू भावे तेनू चंगी लगे मैं दीजे नाम निवास हर गुण गावसी। अरदास करके मंगदे की ने ए नहीं कि उन्होंने लोकां नू ही किया कि जपो तां इको नामा अपने लिए भी यही मंगदे ने मैं दीजे मैनू भी ये दात दे मालका भावे नाम दे मुजस्मे सन गुरु नानक साहिब रब दा ही रूप ने ओ परमेश्वर दा रूप ने लेकिन फिर भी जदों अरदास करके मंगदे ने ते आम जगयासू दी तरह मंग रहे निम्रता नाल

0: अंदर निवास वस जाए, टिक जाए। जो तू नाम देना मैनू अपना, वो टिक जाए, वस जाए मेरे अंदर। हर गुण गावसी ते दूजी दाते दे, मैं तेरी सोबत विच बैठ के, तेरी संगत विच बैठ के, जिन्ना चिर तू मेरे तन विच प्राण टिकाए ने, मैं हर साह दे नाल तेरे गुण गावा, तेरी सिफत करा। जेड़ा नाम तू मेरे हिरदे विच टिका देवें, वसा देवें, उस नाम नू मैं तेरी संगत विच बैठ के तेरी सिफ सलाह जड़ी है हर सा दम नाल करा। ए मेरी नानक दी तेरे चरणा विच अरदास है। और जे तेनू चंगी लगे पा जावे मेरी अरदास, ते कबूल करके मैनू आ दात दे दे के मैं तेरे गुण गावा, गुण गावा दिन रात, नानक चाहे फिर अंदर ये चाह बना दे कि मैं तेरी सिफ तो सलाह दिन रात करा। आप जी ने मन बिरतियां एकाग्र करके अज अमृत वेले जो सतगुरां ने हुक्म दी बख्शीश कीती है, दी विचार संखेप केवल अखरी अर्थ करन दा मैं यतन कीता है, क्योंकि अष्टपदी सी, समा सीमित सी, समय दी संपूर्णता है। भुला चुका दी दास नूं खिमा कर। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। राम कली महला तीजा, आनंद को अंकार सतगुरु प्रसाद। आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुरु ता पाया सहज सेती मन वजियां वाधाइयां। राग रतन परवार परियां शब्द गावने आईयां, शब्दो तां गावो हरि केरा मन जिनी वसाया। कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया, ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना। अंगीकारो करे तेरा कार्य सब सवारना, सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे। कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले, साचे साहिबा क्या नाही कर तेरा, करता तेरा सब किछ है। जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी, नाम मन वसावे नाम जिन कै मन वसिया, वाजे शब्द कनेरे। कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही कर तेरा, साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गुवाइया, कर शांत सुख मन आए वसिया, जिन इच्छा सब पुजाइया। सदा कुर्बान कीता गुरु विटों, जिस दिया ए वडे आईया। कह नानक सुनो संतो शब्द धरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो। वाजे पंच शब्द तित कर सुभागे, कर सुभागे शब्द वाजे कला जित कर तारिया। पंच दूत तुद वस कीते काल कंठ कमारिया, तुर करम पाया तुद जिन को से नाम हर के लागे। कह नानक तैं सुख होआ तित कर अणहद वाजे, अणद सुनो वड भागी हो, सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे। दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी, संत साजन पै सरसे पूरे गुरते जानी। सुनते पुनीत कहते पवित सत गुर रहया परपूरे, बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। सुनते पुनीत कहते पवित सत गुर रहया परपूरे, बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: सब तेरी तुम मात पिता हम बारक, तुमरी कृपा मैं सूख, कोई न जाने तुमरा अंत उचेते। सगल समगरी तुमरे सूतरन

जाके कुटुंब के ढेड सब ढूर टवंत, फिर है अजहू बनारसी आस पासा। आचार सहत

तू जाने सब विद बूझ आपे। जन नानक के प्रभ घट घटे घट घटे घट हर घाट। कानड़ा महला चौथा। जप मन गोबिंद माधु हर हर अगम अगाधु। मत गुरमत हर

जिन कल राखी मेरी ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना नाहिन निर्मल करनी साध संगत कै अंचल लाभ हो।

तीर्थ नावा जे तिस पावा विण पाणे की नाय करी जति सिठो पाई वेखा विण करमा की मिलै लई मात विच रतन जुआ हर माणक जे एक गुर की सिख सुनी गुरा एक दे बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए नवा खना विच जानिया नाल चल सब कोए चंगा ना रखाए कै जस कीर्त जगले जे तिस नदना आवई ता वात न पुछे के कीटा अंदर कीट कर दोसी दोस्त तरे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंत्या गुण दे तेहा कोई न सुजई जे तिस गुण कोई करे सुनया सिद्ध पीर सुरनाथ सुनया धरतवल आकाश सुनया दीप लो पाताल सुनया पोह न सकै काल नानक भक्तां सदा विकास सुनया दूप पाप का नास सुनया ईसर ब्रह्माइंद सुनया मुख सलाहण मंद सुनया जोग जुग तन भे सुनया सास सिमृत वेद नानक भक्तां सदा विगास सुनया दुख पाप का नास सुनया सत्संग तो ज्ञान सुनया अठ सठ का स्नान सुनया पढ़ पढ़ पावे मान सुनया लागे सहज ध्यान नानक भक्तां सदा विगास सुनया दुख पाप का नास सुनया सरागुणा के गा सुनया सेख पीर पातशाह सुनया अंधे पावे राह सुनया हाथ होवै सगाह नानक भक्तां सदा विगास सुनया दुख पाप का नास मन्ने की गत कही न जाए जे को कह पिछे पुछता है कागद कलम न लिखण हार मन्ने का बैकरण विचार ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन को मन्ना सुरत होवै मन बुद्ध मन्ना सगल भवन की सुध मन्ना मोह चोटा ना खाए मन्ना जम का साथ ना जाए ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाना मन को मन्ना मार्ग ठग ना पाए मन्ना पथ से प्रगट जाए मन्ना मग न चलाए पंथ मन्ना धर्म से तीसन बांधे ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाना मन कोए मन्ना पावे मुख द्वार मन्ना परवार ऐसा धार मन्ना तरह तारे गुरसिख मन्ना नानक पवे न भेखे ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए पंच प्रवान पंच प्रधान पंचे पावे दरगह मान पंचे सुहैदा राजान पंचा का गुर एक ध्यान जे को कह करे विचार करते कह करने नाही सुमार तौल धर्म दया का पूत संतोख थाप रखिया जन सूत जे को बुझै होवै सचियार तवलै उपर केता पार धरती होर परै होर होर तिसते भार तलै कवण जोर जी जात रंगा के नाव सबना लिखिया बुढ़ी कलाम एहो लेखा लिख जाना कोय लेखा लिखिया केता होय केता तान सवाल रूप केती दास जाने कौन कूत कीता फसाओ एको को आओ तिसे होए लख दरी आओ कुदरत कौन कहा विचार वारिया न जावा एक बार जो तुद भावै साई भलीकार तुसदा सलामत निरंकार असंख जाप असंख भाओ असंख पूजा असंख तपताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहै उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूरम भक सार असंख मोहन लिवलाय तार कुदरत कौन कहा विचार वारिया न जावा एक बार जो तुद भावै साई भलीकार तू सदा सलामत निरंकार असंख मूर्ख अंध घोर असंख चोर हरामखोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गल वड हत्या कमाए असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़ियार कूड़े फी राहे असंख मलेश मल पक खाए असंख निंदक सिर कर है पार नानक नीच कह विचार वारिया न जावा एक बार जो तुत भावै साई भलीकार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव गम गम असंख लो असंख है सिर पार होए अखरी नाम अखरी साला अखरी ज्ञान गीत गुणगा अखरी लिखण बोलन बाण अखरा सिर संयोग बखाण जिने लिखे ते सिर नाए जे फरमाए ते ते पाए जे ता कीता ते ता नाओ विणना वे नाही को थाओ कुदरत कमन कहा विचार वारे न जावा एक बार जो तुद भावै साई भलीकार तू सदा सलामत निरंकार भरियै हथ पैर तन दे पानी धोता उतर सखे मोत पलीसी कपड़ होए दे साबून लइयै ओ धोए भरियै मत पापा का संग ओ धोप नावै कै रंग पुनी पापी आखण नाहे कर कर करना लिख लै जाओ
आपे बीज आपे ही खाओ नानक हुक्मी आवो जाओ तीर्थ तप दया दत्त दान जे को पावे तिल का मान सुनिया मनिया मन कीता पाओ अंतरगत तीर्थ मल नाओ साब गुण तेरे मैं नाही कोए बिन गुण कीते भगत ना होए सोस्तास बाणी परमाओ सत सुहाण सदा मन चाओ कवन सवेला वक्त कवन कवन सित कवन वार कवन सिरुति माह कवन जित हो आयाकार वेल न पाया पंडती जो हो लेख पुराण वस न पायो कादिया ज लिखन ले कुराण थित वार न जोगी जाना रुतमा न कोई जा करता सिटी को साजे आपे जाना सोई किव करया का किव सलाही क्यो वरनी किव जाना नानक आखन सब को आख एक दू एक सियाणा वड्डा साहेब वड्डी नाई कीता जा का होवै नानक जे को आपो जाना अगे गया ना सोहै पाताला पाताल लख आगास आगास उड़ कोड़ पाल थके वेद कहन एक बात पाताला पाताल लख आगास आगास उड़क उड़क पाल थके वेद कहन एक बात सहस अठारह कहन कते बांस रू एक सात लेखा हो लिखिया लेखा हो विनाश नानक वड्डा आखिया आपे जाना आप साला ही साला है ती सुख न पाईया नदियां तैवा पवें समुद्र न जानिया समुंद सा सुल्तान गिरह से तीमाल तन कीड़ी तुल न होवनी जे तिस मनो न विसर अंत न सिथी कहन न अंत अंत न करण देन अंत अंत न वेखण सुन न अंत अंत न जाप क्या मन मंत अंत न जाप कीता आकार अंत न जाप पारावार अंत कारण के ते बिल लाहे ताके अंत न पाए जाहे हो अंत न जाने कोए बहुता कहिए बहुता होए वड्डा साहेब ऊंचा था ऊंचे ऊपर ऊंचा नाव ए वडूचा होवे कोए ते सुचे को जाने सोए जेवड़े आप जाने आप आप नानक नदरी करमी दात बहुता कर्म लिखिया ना जाए वड्डा दाता तिल ना समाए केते मंगे जोद पार केते अगंत नहीं विचार केते खप तुटा बेकार केते ले ले मुकर पाए केते मुर खाई खाए केते दू भूक सदमार ए पीदा तेरी दातार बंद खलासी पाना होए हो रहा न सकै कोए जे को खाए का खण पाए जाने जितिया म खाए आपे जाने आपे दे अख से पिकई के जिसनों बक्से सिफ साला नानक पातशाही पातशाह अमुल गुण अमुल व्यापार अमुल व्यापारी अमुल भंडार अमुला वह मुल जाए अमुल पाए अमुला समाहे अमुल धर्म अमुल दीवान अमुल तुल अमुल प्रमाण अमुल बख्शीस अमुल निशान अमुल कर्म अमुल प्रमाण अमुलो अमुल आख्या न जाए आख आग्रह लिवलाए आखे वेद पाठ पुराण आखें पढ़े करे व्याख्यान आखें ब्रह्मे आखें इंद आखें गोपी तय गोविंद आखें ईसर आखें सिद्ध आखें किते किते बुद्ध आखें दानव आखें देव आखें सुर नर मुंजन सेव किते आखें आखण पाए किते कह कह उठ जाए एते किते होर करे ताग न सके के के जेवड़ भाव तेवड़ होए नानक जाने साचा सोए जे को आखे बोल बिगाड़ ता लिखिया सिर गवारा गवार सो दर के हा सो कर के हा जित वह सर्व संभाले वाजे नादा ने कसंखा के ते वावन हारे के तेरा करी सो कही अनंग के ते गावन हारे गावे सोहनो पौन पानी बस अंतर गावे राजा धर्म दुआरे गावे चित गुप्त लिख जाना है लिख लिख धर्म विचारे गावे ईश्वर ब्रह्मा देवी सुन सदा सुवारे गावे इंद्रदासन बैठे देवते अंदर नाले गावे सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे गावन जति सती संतोखी गावे वीर करारे गावन पंडित पंडर की सर युग युग वेदा नाले गावे मोनिया मन मोहन सुरगा मच पयाले गावन रतन उपाय तेरे अठसठ तीर्थ नाले गावे जोत महाबल सूरा गावे खाणी चारे गावे खंड मंडल वर भंडा कर कर रखे तारे सही तुदनों गावे जोत पावन रुते तेरे भक्त रसाले होर केते गावन से मैं चेतना आवन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच सब साचा साची नाई हैपी होसी जाय न जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी माया जन उपाई कर कर वेख कीता अपना जिते सी वड्याई जो तिस भाव सोई करसी हुक्म न करना जाई सो पा सौ सहा पात साहेब नानक रहन रजाई।
मुंदा संतोख सरम पत चोड़ी ध्यान की करे विभूत किंता काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीत जग जीत आदेश सयादेश आद नील अनाद नाथ युग युग को वेश भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजे नाद आप नाथ नाथी सब जा कीरत से दबरा साध संयोग विजोग द कर चलावै लेखे आवै भाग आदेश सया देश आद नील अनाद नाथ युग युग को वेश एक माई जुगत व्याई तिन चेले प्रमाण एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीबान जिब तिस भावै तिवै चलावै जिब होवै फुरमान यो वेखै ओना नदर नावै बहुताए विडान आदेश तिसय आदेश आद नील अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस आसन लोय लोय भंडार जुग पाया से एक बार कर कर वेख सिरजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तिसय आदेश आद नील अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस एक दू जीबों लख होए लखों में लख बीस लख लगेड़ाया किया एक नाम जगदीस इतरा पथ पवड़िया चढ़िया होई कीस सुन गलाया कासकी कीटा इरीस नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़ा ठीस आखन जोर चुपै न जोर जोर न मंगन दे न जोर जोर न जीवन मरन जोर जोर न राजमाल मनसोर जोर न सुती ज्ञान विचार जोर न जुक्ति छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखै सोए नानक उत्तम नीच न कोए राती रुति तिथि वार पौन पानी अग्नि पाताल तिस वे धरती थाप रखी धर्मसाल तिस वे जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथै सोन पंच परवान नदरी करम पवै निशान कच पकाई उथै पाए नानंग गया जापै जाए धर्म खंड काय हो धर्म ज्ञान खंड काय आखो कर्म केते पौन पानी वै संतर केते कान महेश केते बरमे घाट घड़िय रूप रंग के वेस केतिया करम भूमि मेर केते केते धूप देस केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देस केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवी वेश केते देवदान मन केते केते रतन समुंद केतिया खाणी केतिया बाणी केते पात नरिंद केतिया सुरती सेव केते नानक अंत नयंत ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड तिथे नाद विनोद कोड आनंद शर्म खंड की बाणी रूप तिथे घाट घड़िए बहुत अनूप ताकि अंगला कतिया न जाए जे को कहे पिछे पछताए तिथा घड़िया सुरत मत मन बुद्ध तिथा घड़िया सुरा सिद्धा की सुध कर्म खंड की बाणी जोर तिथा होर न कोई होर तिथा जोध महाबल सूर तिन मैं राम रहा भरपूर तिथा सीतो सीता मैं ममाए ताके रूप न कथने जाहे ना उमर न ठाके जाहे जिनका राम वसै मन माहे तिथै भगत वसै के लोक रहै नंद सच्चा मन सोए सच खंड वसै निरंकार कर कर वेखै नदर निहाल तिथै खंड मंडल वर भंड जे को कथा तंत नंत तिथै लो लो आकार जिव जिव हुकम तिवै तिवकार वेखै विकसै कर विचार नानक कथना करड़ा सार जात पहारा धीरज सुनियार वहरण मत वेद हथियार पाओ खला यगन तपताओ पांडा पाओ अमृत तित ढाल पांडा पाओ अमृत तित ढाल घड़िय सब सची टकसाल जिनको नदर कर्म तिनकार नानक नदरी नदर निहाल सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिवस रात दुदाई दाया खेल सगल जगत चंगे आईया बुरे आईया वाचे धर्म हदूर करमी आपो अपनी के नेड़ा के दूर जिनी नाम ते आया गैम सकत काल नानक ते मुख उजले।

सोहेला रागौड़ी दीप की महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद जय कार कीर्त आखिया करते का होय विचारो तित कर गावो सोहेला सिवरियो सिर जनहार तुम गावो मेरे निर्भव का सोहेला हो वारी जे सोहेल सदा सुख होए रहाव नेत नेत जीड़े संभालिया न देखा गा देवनहार तेरे दाने कीमत ना पवाए तिस नाते कमन सुमार संबत सहा लिखिया मिलकर पावो तेल देव सजन सीसरिया जो हुआ साहब स्यो मेल घर घर एहो पहुंचा सदने नित पवन सदन हारा सिमरिया नानक से देह आवन राग आसा महला पहला छे घर छे गुर छे उपदेश गुर गुर एको वेस अनेक बाबा जय घर करते कीर्त होए सो कर राख वडाई तोए रहाओ विश्वे चस्या कड़िया पहरा थिती वारी माहो आ सूरज कोरो तनेक नान करते के केते वेस राखना श्री माला पहला गगन में थाल रव चंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती धूप माल्यान लोप अमन चवरो करे सगल मन राय फूल अंत ज्योति कैसी आरती होए पव खंडना तेरी आरती अनहता शब्द वाजंत तेरी राव सह सब नैन नन नैन है तोहे को सहस मूर्त ननायक तोही सहस पद विमल नन एक पद गंध बिन सहस सब गंध विचलत मोही सब मैं जोत जोत है सोए तिसला चानन सब मैं चानन होए गुरसाखी जोत प्रगट होए जोत स्वभाव स्वार्थी होए हर चरण कमल मकरंद लोभित मनो अन दिनो मोहया ही प्यासा कृपा जल दे नानक सारंको होए जाते तेरा नाए वासा राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर पौ भरिया मिल साधु खंडल खंडा हे पूर्व लिख लिखे गुर पाया मन हर लि मंडल मंडा हे कर साधु अंजलि पुन वड्डा हे कर डंडौत पुन वड्डा हे रहाओ साकत हर रस साधना जानिया तिने अंतर हो मैं कंडा हे ज्यो ज्यो चला चुभै दुख पावै जमकाल सहै से डंडा हे हर जन हर हर नाम समाणे दुख जन मरण भाव खंडा हे अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर वो सोभ खंड ब्रह्मंडा हे हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख वड वड्डा हे जन नानक नाम आधार टेक है हर नामे ही सुख मंडा हे राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवां करो बेनंती सुनो मेरे मीता संत संत टहल की बेला इहा खाट चलो हर लाहा आगे बसन सहेला औद घट है दिन सरैना रे मन गुरमिल का इसवारे रहाव इहो संसार विकार संसे मैं तरयो ब्रह्म ज्ञानी जिस सज गाय पिया वह इहो रस अकथ कथा तिन जानी जाको आए सोई बिहा जो हर गुरते मन बसेरा निज कर मैल पाव सुख सहजे बोर नहे होए गो फेरा अंतर जामी पुरख विधाते सरदा मन की पूरे नानक दास है सुख मांगे मोको कर संतन की तूरे एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग श्री राग महला पहला घर पहला मोती ता मंदर उसरा रतनी ता होहे जड़ाओ कस्तूर कुंगू अगर चंदन लिपिया वै चाओ मत देख भूला विसरा तेरा चेतन आवै नाओ हार बिन जियो बल बल जाओ मैं अपना गुर पूछ देखिया अवर नाही थाओ रहाओ धरती ता हीरे लाल चढ़ती पलंग लाल जड़ाओ मोहनी मुख मणि सोहै करे रंग पसाओ मत देख भूला विसरै तेरा चेतन आवै नाओ सिद्ध होवा सिद्ध लाई रद्याखायाओ गुप्त प्रगट होए बैसा लोक राखै पाओ मत देख भूला विसरै तेरा चेतन आवै नाओ सुल्तान हो आ मेल लश्कर तख्त राखा पाओ हुक्म हासिल करी बैठा नानका सब पाओ मत देख भूला विसरै तेरा चेतन आवै नाओ श्री राग महला पहला कोट कोटि मेरी आर जा पवन पियण पियाओ चंद सूरज गुफा न देखा सुपने सौन न थाओ पी तेरी कीमत ना पवै हो केवड़ आखा नाओ
ਸਾਚਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਜ ਥਾਏ ਸੁਣ ਸੁਣ ਆਖਣੇ ਆਖਣਾ ਜੇ ਭਾਵੈ ਕਰੇ ਤਮਾਏ ਰਹਾਉ ਕੁਸਾ ਕਟੀਆ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੀਸਣ ਪੀਸਾ ਪਾਏ ਅੱਗੇ ਸੇ ਤੀਜਾ ਲਿਆ ਭਸਮ ਸੇ ਤੀ ਰਲ ਜਾਓ ਪੀ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੈ ਹੋਕੇ ਵੜਿਆ ਖਾਨਾਓ ਪੰਖੀ ਹੋਏ ਕਹਿ ਜੇ ਪਵਾਸ ਅਸਮਾਨੀ ਜਾਓ ਨਦਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਵੋ ਨਾ ਕਿਛ ਪਿਆ ਨਾ ਖਾਓ ਪੀ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੈ ਹੋਕੇ ਵੜਿਆ ਖਾਨਾਓ ਨਾਨਕ ਕਾਗਦ ਲਖਮਣਾ ਪੜ ਪੜ ਕੀ ਚੈ ਪਾਓ ਮਸੂ ਤੋੜਨਾ ਆਵਈ ਲੇਖਣ ਪਾਉਣ ਚਲਾਓ ਪੀ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੈ ਹੋਕੇ ਵੜਿਆ ਖਾਨਾਓ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਲੇਖੈ ਬੋਲਣ ਬੋਲਣਾ ਲੇਖੈ ਖਾਣਾ ਖਾਓ ਲੇਖੈ ਵਾਟ ਚਲਾਈਆ ਲੇਖੈ ਸੁਣ ਵਿਖਾਓ ਲੇਖੈ ਸਾਲਵਾਈਐ ਪੜੈ ਕਿ ਪੁੱਛਣ ਜਾਓ ਬਾਬਾ ਮਾਇਆ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰਿਆ ਨਾ ਤਿਸੇ ਨਾ ਉਹ ਰਹਾਉ ਜੀਵਨ ਮਰਨਾ ਜਾਏ ਕਹਿ ਇੱਥੇ ਖਾਜੈ ਕਾਲ ਜਿੱਥੇ ਬਸ ਸਮਝਾਈਐ ਤਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਚੱਲਿਓ ਨਾਲ ਰੋਮਣ ਵਾਲੇ ਜੇਤੜੇ ਸਭ ਨੇ ਪੰਡ ਪਰਾਲ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਹੋਰ ਜੀਆਂ ਕਿਤੇ ਲੋ ਨੀਚਾ ਅੰਦਰ ਨੀ ਜਾਤ ਨੀਚੀ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਤੂੰ ਹੋਰ ਜੀਆਂ ਕਿਤੇ ਲੋ ਨੀਚਾ ਅੰਦਰ ਨੀ ਜਾਤ ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਗ ਸੰਗ ਸਾਥ ਵੱਡਿਆਂ ਸਿਉਂ ਕਿਆਰੀ ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਨੀ ਸੰਭਾਲੀਅਨ ਤਿੱਥੇ ਨਦਰ ਤੇਰੀ ਬਖਸੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਲੱਭ ਕੁੱਤਾ ਕੂੜ ਚੂੜਾ ਠੱਗ ਖਾਦਾ ਮੁਰਦਾਰ ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਪਰ ਮਲ ਮੁਖ ਸੁਧੀ ਅਗਨ ਕ੍ਰੋਧ ਚੰਡਾਲ ਰਸ ਕਸ ਆਪਸ

उत्तम से दर उत्तम कहिया निज कर्म बहरो ए रहाओ रस सोना रस रूपा कामण रस परमल की वास रस घोड़े रस सेजा मंदर रस मीठा रस मास एते रस शरीर कह कह घट नाम निवास जित बोलिया पत पाई है सो बोलिया प्रमाण पिका बोल भी गुचना सुन मूर्ख मन आ जान जो तिस पावे से भले होर की कहण वखाण तिन मत तिन पत तिन धन पलै जिन हिरदय रहा समाए तिनका क्या सलाहना है वरसवा ल्योकाए नानक नदरी बार है राचा दान राचा है दान ननाए श्री राग महला पहला अमल गलोला कोड़का दिता देवन हार मती मरण विसारिया खुशी कीती दिन चार सच मिलिया तन सोफिया राखण को दरबार नानक साचे को सच जान जित सेवे आए सुख पाई है तेरी दरगह चलै मान रहा सच सरा गुड़ बाहरा जिस वे सच्चा नाओ सुन सुन वखाणे जितड़े हो तिन बलिहारे जाओ ता मन खीवा जानी है जा महली पाए था नाओ नीर चंगियाईया सत परमल तनवास ता मुखो है उजला लख दाती एक दात दुख तिसै पै आखिया सुख जिसा ही पास सो क्यों मनो विसारिया है जाके जी प्राण तिस बिन सब अपवित्र है जेता पैनन खान होर गल्ला सब कोड़िया तुद भावे परवान श्री राग महला पहला जाल मोए कस मुस कर मत कागद कर सार भाव कलम कर चित लिखारी गुर पुछ लिख बीचार लिख नाम साला लिख लिख अंत न पारावार बाबा एह लेखा लिख जान जिथे लेखा मंगिया तिथे हो सच्चा निशान रहाओ जिथे मिला वडे आईया सद खुशिया सद चाओ तिन मुक्त के निकले जिन मन सच्चा नाओ कर्म मिला ता पाई है नाही गली वाओ दुआओ एक आवे एक जाहे उठ रखिये नाव सलार एक उपाय मंगते एक ना वडे दरबार अगे गईया जानिए विणना वै बेकार पै तेरा डर अगला खाप खाप छिजै दे नाव जिना सुल्तान खान होंदे जिठे खे नान कुठी चलिया सब कूड़े टुटे ने श्री राग महला पहला साव रस मिठे मन्या सुनिया सा लोने खट तुरसी मुख बोलना मारन नाद किए छत्ती अमृत पाओ एक जाको नदर करे बाबा और खाना खुशी कुआर जित खाद तन पीड़ी है मन में चला विकार रहाओ रत्ता पहनन मन रत्ता सुखे दी सतदान नीली स्याही कदा करनी पहरन पैर ध्यान कमर बंद संतोका धन जोबन तेरा नाम बाबा होर पहनन खुशी खुआर जित पैदा तन पीड़ी है मन में चला विकार रहाओ कूड़े पाकर सोने सागत भूजन तेरी वाट तर्क तरकस तीर कमान सांग तेग बंद गुण धात वाजा ने जा पात से प्रगट कर्म तेरा मेरी जात बाबा होर चढ़ना खुशी खुआर जित चढ़िया तन पीड़िया है मन में चला विकार रहा घर मंदर खुशी नाम की नदर तेरी परिवार हुक्म सोई तुद भाव सी होर आखण बहुत अपार नानक सच्चा पासा पूछ न करे विचार बाबा होर सोना खुशी खुआर जित सुते तन पीड़िया है मन में चला विकार रहा श्री राग महला पहला कुंगू की काया रतना की ललता अगर वास संसास अठ सठ तीर्थ का मुक्ति का तिथ घट मत विगास उत्तम पीसा लाना सच नाम गुणतास बाबा होर मत होर होर जे सवेर कमाई है कूड़े कूड़ा जोर रहाओ पूज लगे पी राखिया सब मिले संसार ना सदाए अपना होवे सिद्ध सुमार जा पत लेखा ना पवै सबा पूज खुआर जिनको सतगुर थापिया तिन मेट न सके कोए उन्ना अंदर नाम निदान है नामो प्रगट होए ना पूजिए ना मनिए अखंड सदा सच सोए खेहू खेर लाइए ता जियो केहा होए जलिया सब सियाण पा उठी चलिया रोए नानक नाम विसारिए दर गया क्या होए श्री राग महला पहला
ਗੁਣਵੰਤੀ ਗੁਣ ਵਿਥਰੈ ਔਗਣਵੰਤੀ ਝੂਰ ਜੇ ਲੋੜੈ ਵਰ ਕਾਮਣੀ ਨਹਿ ਪਿਲੀਐ ਫਿਰ ਪੂਰ ਨਾ ਬੇੜੀ ਨਾ ਤੁਲਹੜਾ ਨਾ ਪਾਈਐ ਫਿਰ ਦੂਰ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਪੂਰੈ ਤਖਸੈ ਅਡੋਲ ਗੁਰਮੁਖ ਪੂਰਾ ਜੇ ਕਰੇ ਪਾਈਐ ਸਾਚ ਅਤੋਲ ਰਹਾਉ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਮੰਦਰ ਸੋਨਾ ਤਿਸ ਮੈਂ ਮਾਣਕ ਲਾਲ ਮੋਤੀ ਹੀਰਾ ਨਿਰਮਲਾ ਕੰਚਨ ਕੋਟ ਵਿਸਾਲ ਬਿਨ ਪੌੜੀ ਗੜ ਕਿਉ ਚੜੋ ਗੁਰ ਹਰ ਧਿਆਨ ਨਿਹਾਲ ਗੁਰ ਪੌੜੀ ਬੇੜੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਤੁਲਹਾ ਹਰ ਨਾਓ ਗੁਰ ਸਰਸਾਗਰ ਬੋਏ ਤੋ ਗੁਰ ਤੀਰਥ ਦਰਿਆਓ ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਉਜਲੀ ਸਤ ਸਰਨਾਵਣ ਜਾਓ ਪੂਰੋ ਪੂਰੋ ਆਖੀਐ ਪੂਰਾ ਤਖ ਨਿਵਾਸ ਪੂਰਾ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਣਾ ਪੂਰਾ ਆਸ ਨਿਰਾਸ ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਜੇ ਮਿਲੈ ਕਿਉਂ ਘਾਟੈ ਗੁਣਤਾ ਸ੍ਰੀ ਆਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਆਵੋ ਭੈਣੇ ਗਲ ਮਿਲਾਏ ਅੰਕ ਸਹੇਲੜੀਆ ਮਿਲਕਾ ਕਰੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਮਰੱਥ ਕੰਤ ਕੀਆ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਗੁਣ ਔਗਣ ਸਭ ਅਸਾਹ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕੋ ਤੇਰਾ ਜੋਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੀਐ ਜਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਿਆ ਹੋਰ ਰਹਾਓ ਜਾਏ ਪੁੱਛੋ ਸੁਹਾਗਣੀ ਤੁਸੀਂ

कीर्तिया तेरी कुदरती केवट तेरी दात के ते तेरे जीजन सब सिफत करै दिन रात के ते तेरे रूप रंग के ते जाते अजात सच मिलै सच उपजै सच में सच समाए सुरत होवै पतु गुवाए गुरबचनी पौ खाए नानक सच्चा पासाओ आपे लै मिलाए सिराग महला पहला पली सरी जी उबरी हो मैं मुई कराहो दूत लगे फिर चाकरी।

बिन निरफो क्योती है गुरमुख सब समाए रहाओ केता आखण आखिया आखण तोट ना होए मंगण वाले केतड़े दाता एको सोए जिसके जी प्राण है मन वसिया सुख होए जग सुपना बाजी बनी खिन में खेल खिलाए संयोगी मिले से विजोगी उठ जाए जो तस्पाणा सोथिया अवर न करना जाए गुरमुख वस्त वेसाई है सच वखर सच रास जिनी सच वणजिया गुरपुरै सा बास नानक वस्त पछाण सी सच सौदा जिस पास राग महला पहला तात मिलै फुन तात कहो सिफी सिफ समाए लाल गुलाल गहबरा सचा रंग चढ़ाओ सच मिलै संतोखिया हर जा पेकै पाए भाई रे संत जना की रेण संत सभा गुर पाई मुक्त पदार्थ तेण रहाओ ऊचो थान सुहावना उपर महल मुरार सच करनी दे पाई है दार घर महल प्यार गुरमुख मन समझाई है आत्म राम विचार त्रिबद कर्म कमाई है आसंदेसा होए क्यों गोर बिन त्रुपी छुट सी सहज मिलिया सुख होए निज घर महल पछाणिया नदर करे मल तो बिन गुर महल न उतरै बिन हार क्यों करवास एको सद विचारी आए वर्तिया गए आस नानक देख दिखाई आए हो सद बनिहारे जास सिराग महला पहला त्रिग जीवन दुहागनी मुठी दूजे पाए कलर केरी कंध जो निस्किर टै पाए बिन सबद सुख ना थी आए फिर बिन दो दुख ना पा बिन सबद सुख ना थी आए फिर बिन दुख न जाए मुंदे फिर बिन क्या सिगार दार घर ढोई ना लहाय दरगह झूठ कुआर रहाओ आप सुजान ना भुल सच्चा वड किरसान पहला धरती साध कै सच नाम दे दान नौने दुबजै नाम ए कर्म पवे निशान गुर को जान न जान क्या ते सजार अंदलै नाम विसारिया मन मुखंद गुबार आवन जान न चुकई मर जन्म होए खुआर चंदन मोलन आया कुंगू मांग संदूर चुआ चंदन बौकना पाना नाल कपूर पाना नाल कपूर जे धन कंतना पावै तू सब डंबर कूड़ सब रस भोगण बाद है सब सिगार विकार जब लग शब्द ना भेदिया क्यों सो है गुरुद्वार नानक धन सुहागणी जिन सह नाल प्यार श्री राग महला पहला सुनी दे डरावनी जाजियो विचों जाए पाए बुलंदी बिजवी तू ना निकसियो काए पंचे रुने देख परे बिनसे दूजे पाए मुड़े राम जपो गुणसार होमै ममता मोहनी सब मुठी अंकार रहाओ जिनी नाम विसारिया दूजे कार लग दुबदा लागे पचमोए अंत त्रिश्ना अग गुर राखे से उबरे होर मुठी धंधा ठग मुई प्रीत प्यार गया मुआ वैर विरोध धंधा थका हो मुई ममता माया क्रोध कर्म लै सच पाई है गुरमुख सदा निरोध सच कार है सच मिलै गुरमत पलै पाए सो नर जमै ना मरै ना आवै ना जाए नानक दर प्रधान सो दरगह पैदा जाए श्री राग महला पहला तू जल बल माटी भया मन माया मोह मनूर योगन फिर लागू पय कुरब जावै तूर बिन सबदा परमाई है दुबदा

तन सुचा सो आखिए जिसमें साचा नाम तन सुचा सो आखिए जिसमें साचा नाओ पै सच राती देहरी जेहवा सच सुहाओ सच नदर निहालिए बोण न पावताओ सच ते पवना भया पवना ते जल होए जल ते त्रिपवन साजिया घट घट जोत समोए निर्मल मैला नाथ जय शब्द रते पत होए एह मन साच संतोखिया नदर करे ते समाहे पंच भूत सच भय रते ज्योति ज्योत सच्ची मन माहे नानक औगण विसरे गुर राखे पत पाहे श्री राग महला पहला नानक बेड़ी सच की तरिए गुर विचार एक जावै पूर परे हंकार मन हठ मती बुढ़िया गुरमुख सच सुतार बिन

आगे को डो जलाये पाछे हरि अंगूर जिससे उपजत से बिन से घट घट सच भरपूर आपे मेल मिला वही सच मेल हदूर साहे साहे तुझ समला कदे ना विसारे ओ जो जो साहे मन वसाए गुरमुख अमृत पे ओ मन तन तेरा तू तनी गर्भ निवार समेओ जिन्ह जगत उपाया त्रि भवन कर आकार गुरमुख चानन जानिए मनमुख मुक्त गुबार घट घट जो निरंतरी बूझे गुरमत सार गुरमुख जिन जिनी जानिया तिनकी चैसा बास सचे से तीराल मिले सच्चा गुण सच्चे गुण प्रगास नानक नाम संतोखिया जियो पिंड प्रभास श्री राग महला पहला। सुन मन मित्र प्यारिया मिल वेला है ए जब लग जोगन सास है तब लगे तन दे बिन गुण काम न आवे टाय टेरी तन खे मेरे मन लैला कर जाहे गुरमुख नाम सलाही है हो मैं निवरी पाहे रहा। सुन सुन गंडन गंडिया लेख पढ़ बुझे पार कृष्णा एन सगली हो मैं रोग विकार ओवे प्रवाह तोलवा गुरमत कीमत सार लख सियाण बजे करी लख सो प्रीत मिलाप बिन संग साधना त्रापिया बिन नावे दुख संताप हर जब जीरा छुटिया गुरमुख जी नयाप तन मन गुर पै बेचिया मन दिया सिर नाल त्रिपुण खोज चंडोलिया गुरमुख खोज निहाल सतगुर मेल मिलाया नानक सो प्रभ नाल श्री राग महला पहला। मरण की चिंता नहीं जीवन की नहीं आस तू सर्ब जिया प्रतपालय लेख सास गिरास अंतर गुरमुख तू वसै ज्यों पा

आओ अंतर की गत जानिए गुरमिलिया संकुतार मुया जित घर जाइए तित जीव दिया मर मार अनहद सब सुहावने पाइए गुर विचार अनहद बाणी पाइए तह मैं विनाश सतगुर सेवे अपना हो सतगुर बाण तास खर दरगह पहनाइए मुख हर नाम निवास जय देखा तै राव रहे शिव शक्ति शक्ति का मेल त्रिहु गुण बंदी देहरी जो आया जग सो खेल विजोगी दुख भी छुड़े मन मुख लाह न मेल मन बैरागी घर वसै सच भय राता होए ज्ञान महारस भोग वै बाड़ भूख न होए नानक ए मन मार मेल पी फिर दुख न होए श्री राग महला पहला एह मनो मूर्ख लोबिया लोबे लगा लोबान सबदन भीजै सकता दुर्मत आवन जान साधु सतगुर जी मिलै।

राम नाम जप दिन सरात गुरमुख हर तन जान सब सुख हर रस भोगने संत सभा मिल ज्ञान नित हर प्रभ सेविया सतगुर दिया नाम कूकर कूड़ कमाई है गुरनिंदा पचै पहचान भरमे भुला दुख घणो जम मार करे खुलहान मनमुख सुख न पाई है गुरमुख सुख सुभान ऐथै धंध पिटाई है सच लिखत प्रमान हर सज्जन गुर सेवदा गुर करनी प्रधान नानक नाम न विसरै कर्म सचै निशान सिर राग महला पहला एक तिल प्यारा विसरै रोग वड्डा मन माहे क्यों दर कह पत पाई है जा हर न वसै मन माहे गुर मिलिय सुख पाई है अगन मरै गुण माहे मान रे एहन सार गुण सार जिन खिन पल नाम न विसरै ते जन विरले संसार रहाओ ज्योति ज्योत मिलाई है सुरती सुरत संजोग हिंसा हो मैं गत गए नाही सह सच सोग गुरमुख जिसार मन वसै तिस मेले गुर संजोग काया कामन जे करी भोगे भोगन हार तिस उन्हें न की जय ज्योति सचलन हार गुरमुख रवै सुहागणी सो प्रभ सेज पतार चारे अगन निवार मर गुरमुख हर जल पाए अंतर कमल प्रगास्याय अमृत भरिया जगाए नान सत गुरमीत कर सच पावै दरगह जाए श्री राग महला पहला हर हर जपो प्यारिया हर हर जपो प्यारिया गुरमतले हर बोल मन सच कसवटी लाई है तुलिया पूरा पूरा तोल कीमत किना ना पाई है रिद माणिक मोल अमोल पाई रे हर हीरा गुरमाहे सत संगत सत गुर पाई है अहिनिस शब्द सलाहे राव सच वखर धन रास लाए पाईए गुर प्रसाद जोगन मर जल पाईए त्यों तृष्णा दास दास जम जदार न लग गई यों पहो जल तरै तरास गुरम कूड़ न पावे सच रथे सच पाए सक सच न पावे कूड़े कूड़ी पाए सच रथे गुर मिली आए सचे सच समाए मन मन माणक लाल नाम रतन पदार्थ हीर मन मैं माणक लाल नाम रतन पदार्थ हीर सच वखर धन नाम है घट घट गैर गंभीर नानक गुरमुख पाई है दया करे हर हीर श्री राग महला।

0: जन हर हर नाम न चेते हो सो अवगणया वह जाय। जिस सतगुर पुरख ना भेटियो सो भौजल पचाए पचाए। हो माणक जियो निर्मोल है हो कौडी बदलै जाय। जिन्ना सतगुर रस मिलै से पूरे पुरख सुजान। गुर मिल भौजल लंघियै दरगह पत परवान। नान से मखूजले धन उपजै शब्द निशान। सिराग महला पहला वणज करो वणजारियो वखर लियो संभालो। तैसी वस विसाई है जैसी निभा नाल। अगे साहु सुजान है लैसी वस संभाल।
1: पाई रे राम कहो चित लाए हर जस वखर लै चलो। सो देखे पति आए रहाओ जिना रास ना सच है। क्यों तिना सुख हुए खोटे वणज वणजी है।

तिन हर गुरव दर्श न होए, खोटे जात न पत है खोट न सिज सी कोए, खोटे खोट कमावना आए गया पत खोए। नानक मन समझाई है गुर के शब्द सला, राम नाम रंग रतिया पार न परम तनहा। हर जपलाहा अगला निरपौ हर मन मां, श्री राग महला पहला कर दूजा तन जोवन। अर फुलड़ा नाठियड़े दिन चार, पबन केरे पत जो टल टुल जमण हार। रंग माण लै जाए सुते।

मत जान सह गली पाया, माल कै माणे रूप की शोभा, इत विधि जन्म गवाया। रहाओ ऐब तन चिकड़ो एहो मन, मीट को कमल की सार नहीं मूल पाई। पौर उस्ताद नित पाख्या बोले, क्यों बुझे जान है बुझाई। आखण सुनना पौन की बाणी, इहो मन रत्ता माया। खसम की नदर दिल है पसंदे, जिनी कर एक तियाया। तीह कर रखे पंज कर साथी, नाओ सैतान मत कट जाई। नानक आखे राहे तै चलना, माल तन चित कू संजाही। श्री राग महला पहला कर चौथा, सोई मौला जिन जग मौलिया। हरिया किया संसारो, आब खाकू जन बंद रहाई। तन सिरजन हारो, मरना मूला मरना। ती करतार हो डरना, रहाओ तातू मूला तातू काजी।

सोई काजी जिन आप तजिया, एक नाम किया आधारो, हैपी होसी जाए न जासी, सच्चा सिरजन हारो। पांच बखत निवाज गुजार है, पढ़े कतेब कुराना, नानक आखे गोरस देई, रेहो पीना खाना। शरीर आगम

फल पाओ फल लिख्या पाए, आप बीज आपे ही खाए। कच्ची कंद कच्चा विचराज मत।

हर रस चाख तख जाख जाए, जिनी गुरमुख चाख्या सहजे रहे समाए रहाओ। जिनी सतगुर सेविया तिनी पाया नाम निदान, अंतर हर रस रव रिहा चूका मन अभिमान। हृदय कमल परगासिया लागा सहज ध्यान, मन निर्मल हर रव रिहा पाया दरगह मान। सतगुर सेवन

घर मिल ऐ नाम पाई ऐ चुकै मुँह प्यास हर सेती मन रव रहा कर ही महे उदास जिना हर का साध आया होतन बलहारे जास नानक नदरी पाई है सच नाम गुण तास श्री राग महला तीजा बहु पेख कर परमाई है मन हृदय कपट समाए हर का महल न पावई मर विस्टा माहे समाए मन रे ग्रह ही महे उदास सच संजम करनी सो करे गुरमुख होए प्रगास रहाओ गुर कै शब्द मन जीत्या गत मुकत करे मह पाए हर का नाम त्याई है सत संगत मेल मिलाए जे लख स्त्रिया भोग करे नवखंड राज कमाहे बिन सतगुर सुख न पावई फिर जोनी पाए हर हर हार कंठ जिनी पहरिया गुरचरणी चतलाए तिना पिछे रिद सिद्ध फिरे उना तिल न तमाए जो प्रभ पावे सो थिए अवर न करना जाए जन नानक जीवे नाम ले हर देवो सहज सुभाए श्री राग महला तीजा कर पहला जिस ही की सरकार है तिस ही का सब कोए गुरमुख कार कमावणी सच घट प्रगट होए अंतर जिसका सच वसे सच्चे सच्ची सोए सच मिले से ना बिछड़ है तन निज कर वासा होए मेरे राम मैं हर बिन अवर न कोए सतगुर सच प्रभ निर्मला शब्द मिलावा हो रहा शब्द मिला सो

देखी सब करे मन मुख बूझ न पाए। जिन गुरमुख हिरदा शुद्ध है सेव पई तन थाए। हर गुण गावे हर नित पढ़े हर गुण गाए समाए। नानक तिन की बाणी सदा सच है जे नाम रहे लिव लाए। श्री राग महला तीजा जिनी एक मन नाम त्याया गुरमती विचार तिनके मुख

ओए अंदरो बाहरो निर्मले सच्चे सच समाए नानक आए से परवान है जिन गुरमति हर त्याए। श्री राग महला तीजा। हर भगता हर तन रास है गुर पूछ करे वापार हर नाम सलाहें सदा सदा वखर हर नाम अदार। गुर पूरे हर नाम दृढ़ाया हर भगता अतुट पंडार पाही रे इस मन को समझाए ये मन आलस क्या करे गुरमुख नाम त्याए। रहाओ हर भगत हर का प्यार है जे गुरमुख करे विचार पाखंड भगत ना हो वही दुविधा बोल खुआर। सो जन रलाया ना रलै जिस अंतर विवेक विचार सो सेवक हर आखिया जो हर राखे उर तार। मन तन सौपे आगे तरे हो मैं बिच हो मार तन गुरमुख सो परवान।

सच्चे हर सच सियो रसना हर गुण गाए पाई रे जग दुखिया दूजै पाए गुर शरण आई सुख लहे अंतिन नाम त्याए रहाओ सच्चे मेल न लाग गई मन निर्मल हर त्याए गुरमुख शब्द पछाणिया हर अमृत नाम समाए गुर ज्ञान पर चंड बलाया अज्ञान अंधेरा जाए मनमुख मेले मल पहे हो मैं तृष्णा विकार बिन शब्द मेल न उतरै मर जमे होए खुआर तातुर बाजी पलच रहे न उरवार न पार गुरमुख जप तप संजमी हर कै नाम प्यार गुरमुख सदा त्याई है।

खिन खिन नाम संभालिया गुरमुख पावे कोई। नाम निधान अखुट है बड़ भागी प्राप्त होए। मेरे मन तज निंदा हो मैं अहंकार हर जियो सदा त्याए तू।

एक है आपे बक्स करे कहना किछ न जावई जिस पावे तिस दे नानक गुरमुख पाई।

मन तावत तार है जा आपे नदर करे पाई रे गुरमुख हर नाम प्याए नाम निदान सद मन बसै महली पावे थाओ रहाओ मन मुख मन तन अंध है

दिखा अंदर पच मुए ना और वार न पार माया मुहे विसारिया जगत पिता प्रतपाल बाझो गुरु अचेत है सब बद्दी जमकाल नानक गुरमत उभरे सच्चा नाम समाल करी राग महला तीजा त्रै गुण माया मोह है गुरमुख चौथा पद पाए कर कृपा मिलायन हर नाम वसिया मन आए पूतै जिनके पुन है तिन सत संगत मिलाए पाई रे गुरमत साच रहाओ साचो साच कमावना।

मनमुख अंध न चेत ही डूब मुए बिन पानी मन रे सदा भजो हर शरणाई गुर का शब्द अंतर बसै ता हर विसर न जाई रहाओ इहो शरीर माया का पुतला विच हाँ मैं दुसी पाई आवण जाना जम्मण मरना मनमुख पत गवाई सतगुर सेव

जत सत तप पवित्र शरीरा हर हरे हर हर मन बसाए सदा आनंद रह दिन राती मिल प्रीतम सुख पाए जो सतगुरु।

नानक नदरी पाईया गुरमुख मेल मिलाओ। श्री राग महला तीजा मन मुख कर्म कमावणे जो दुहागण तन सिगार से जय कंत न आवई नित नित होए खुआर। पैर का महल न पावई ना दिसै घर बार पाई रे एक मन नाम त्याए संता संगत मिल रह जप राम नाम सुख पाए। रहाओ गुरमुख सदा सुहागणी फिर राख्या उर तार मिठा बोल है निव चल है से जैर वै पतार। सो पावन सो भावंती सुहागणी जन गुर का हेत प्यार पूरे भाग सत गुर मिले।

पाणे जो चले दुख न पावे कोए। गुर के पाणे विच अमृत है सहजे पावे कोए। जिना प्रापत तन पिया हमें विच हो खोए। नानक गुरमुख नाम तिआइए सच।

सुहागणी कर्म कमाव दिया सेई कर्म करे सहजे साच मिलावड़ा साच बढ़ाई दे पाई रे गुर बिन भगत न होए बिन गुर भगत न पाई।

निर्मल गुर कै सहज सुभाए, मन तन राता रंग सियो रसना रसन रसाए, नानक रंग न उतरे जो हर तुर छोड़िया लाए। सरी राग महला तीजा गुरमुख कृपा करे भगत कीजे बिन।

भगत हीन काहे जग आया, पूरे गुर की सेवन कीनी बिरथा जन्म गवाया। रहाओ आपे जग जीवन सुखद।

गुण निधान पाया तिस दी कीम न पाई हर प्रभ सखा मीत प्रभ मेरा अंते हुए सखाई अपने मन चित कहे कहाए बिन गुर आप न जाई हर जियो दाता भगत पछल है

सेवन संत जन खड़े पायन गुणी निदान मेरे मन गुर मुख त्याए हर सोए गुर का शब्द मन वसै मन तन निर्मल होए रहाओ कर कृपा कर आया आपे मिलिया आए।

मन तन रता रंग सियो हमे तज विकार एहनस हृदय रव रहा निरभो नाम निरंकार नानक आप मलायन पूरे शब्द अपार श्री राग महला तीजा गोविंद गुणी निदान है अंत न पाया जाए कथनी बदनी ना पाइये हमें बिच हो जाए सतगुर मिलिए सद पैरचे आप वसे मन आए पाई रे गुरमुख बुझे कोए बिन बुझे कर्म कमावणे जन्म पदार्थ खोए रहाओ जिनी चाखिया।

हाथ दात है गुरुद्वारे पाए जेहा की तो तेहा हुआ जेहे कर्म कमाए जत सत संजम नाम है विण नावे निर्मल ना होए पूरे भाग नाम मन बसै शब्द मिलावा होए नानक सहजे ही रंग वर्तदा हर गुण पावे सोए शरीर राग महला तीजा काया सादे उर्द तप करे बिछो होमे न जाए अध्यात्म कर्म जे करे नाम न कभी पाए गुर कै शब्द जीवत मरे हर नाम बसे मन आए सुन मन मेरे भज सत गुर सरणा गुर प्रसादी छुट्टी ऐ बिख पवजल शब्द गुर तरणा रहाओ त्रै गुण सभा तात है दूजा पाओ विकार पंडित पड़े बंधन मुह बादा नह बुझे बिख्या प्यार सतगुर मिलिया त्रैकुटी छुट्टे चौथे पद मुक्त द्वार गुरते मार्ग पाइय।

अत सबल है छड़े न किते उपाए, दूजे पाए दुख लाए दा बहुती देश जाए। नानक नाम लगे से उबरे हमें।

पाउ चुकाए। अंतर तेरे हर वसै गुर सेवा सुख पाए। रहाओ सच बाणी सच शब्द है जा सच तरे प्यार। हर का नाम मन वसै हमें क्रोध निवार। मन निर्मल नाम त्याइए तस पाए मोख द्वार। हमें विच जग बिंसदा मर जमे आवे जाए। मन मुख सब

करे सदा साचे, सदा साचे की लेवलाय। नाम पदार्थ मन वस्या नानक सहज समाए, शरीर आगम हल्ला तीजा जिनी पुरखी सतगुरु न सेवियो, सो दुखिये जुग चार कर होदा पुरख न पछाणिया, अभिमान मुठे हंकार। सतगुरु क्या फिटकिया

राजा बिन गुर रोग न टुटई हमे पीड़ न जाए गुर प्रसादी मन वसै नामे रहे समाए गुर सबदी हर पाइए बिन शब्द परम पुलाए मन रे निज घर वासा होए राम नाम सलाहे तू फिर आवण जान न होए रहाओ हर

ठौर न पाए नी जंपर दुख सहाए जियो पिंड सब तिसदा तिसे दा आधार गुर प्रसादी।

भतीजा। आपे कारण करता करे सृष्ट देखे आप उपाय, सब एको एक वर्तदा अलख न लखिया जाए। आपे प्रभु दयाल है आपे देव जाए, गुरमति सद मन वसिया सच रहे लिवलाए। मन मेरे गुर की मन लहर जाए, मन तन

भतीजा सुन सुन काम गहेलिए क्या चल है बाल उड़ाए अपना पिर न पछाण है क्या मोह देस है जाए जिनी संखी कंत पिछाणिया।

चल गुर कै पाए अंधन रावे फिर अपना सहजे सच समाए रहाओ शब्द रतिया सुहागणी सच्चे शब्द सिगार हर वर पायन कर अपने गुर कै हित प्यार सेज सुहावी हर रंग रवे भगत।

हर जी सच्चा सच तू सब किछ तेरे चीरे लख चौरासी तरस दे फिरे बिन गुर पेटे पीरे हर जियो बक्से बक्स ले सुख सदा सरीरे गुर प्रसादी सेव करी सच गहर गंभीर है मन मेरे नाम रते सुख होए गुरमति नाम सलाही है दूजा अवर न कोए रहाओ धर्म राय नो हुक्म है बह सच्चा धर्म विचार दूजे पाए दुष्ट आत्मा ओहो तेरी सरकार अध्यात्मी हर गुण तास मन जप है एक मुरार तिनकी सेवा धर्म राय करे तन सवारण हार मन के विकार मन्हे तजै मन चुके मोह अभिमान आत्म राम पछाणिया सहजे नाम समान बिन सतगुर मुक्त न पाई है मन मुख

वह न उतरै जे सो तीर्थ नाए बहु बिद कर्म कमाव दे दूनी मल लागी आए पड़ी ऐ मैल ना उतरै पुछो ज्ञानिया जाए मन मेरे गुर शरण आवे ता निर्मल होए मन मुख हर हर कर थके मैल न सकी तोए रहाओ मन मैले भगत न होवे नाम न पाया जाए मन मुख मैले मैले मुए जासन पत गवाए गुर प्रसादी मन वसै मल होमे जाए समाए जो अंधेर दीप कबालिए त्यो गुर ज्ञान अज्ञान तजाए हम किया हम करेगे हम मूरख गावार करने वाला विस्तरिया दूजे पाए प्यार माया जेवड़ दुख नहीं सब पव थके संसार गुरमती सुख पाई सच नाम उर तार जसनो मिले सो मिले हो तिस बलहार जाओ ए मन भगती रतिया सच बाणी न जथाओ मन रते जीवा रती हर गुण सच्चे गाओ नानक नाम न विसरै सच्चे महे समाओ श्री राग महला चौथा कार पहला मैं मन तन बिरहो अत अगला क्यों प्रीतम मिले कर आए जा देखा प्रभ अपना प्रभ देख ऐ दुख जाए जाए पूछा तिन सज्जना प्रभ कित विद मिले मिलाए मेरे सतगुरा मैं तुझ बिन अवर न कोए हम मूरख मुग्ध शरणागति कर कृपा मेले हर सोए रहाओ सतगुरु दाता हर नाम का प्रभ आप मिलावै सोए सतगुर हर प्रभ बुझिया

को नहीं दर दर गुरमुखा नो साबास बिख पौजल डुब दे कड ले जन नानक की अरदास श्री राग महला चौथा नाम मिले मन तृप्ति है।

हो जीवा नाम त्याय बिन नावे जीवन ना थी मेरे सतगुरु नाम दृढ़ाए रहाओ। नाम अमोलक रतन है पूरे सतगुर पास सतगुर सेवै लगिया कड रतन देवै परगास। तन बड़ पागी वड पागिया जो आए मिले गुर पास जिना सतगुर पुरख ना पेट्यो से पाग हीन वस काल। ओए फिर जोन पवाब है विच विस्टा कर विकराल उना पास दुआस न पेटिया जिन अंतर क्रोध चंडाल। सतगुर पुरख अमृत सर बड़ पागी ना है आए उन जन्म जन्म की मैल उतरे निर्मल नाम दृढ़ाए। जन नानक उत्तम पद पाया सतगुर की लबलाए श्री राग महला चौथा गुण गावा गुण विथरा गुण बोली मेरी माए गुरमुख सज्जन गुणकारिया।

चौथा दिनस चढ़े फिर आथ वै रैण सबाई जाए आव कटे नर न बुझे नित मूसा लाज टकाए गुड़ मिठा माया पसरिया मन मुख लग माखी पाचे पचाए पाई रे मैं मीत सखा प्रभ सोए पुत तलत मोह बेखह मोहो बेखह अंत बेली कोई ना होए रहाओ। गुरमति हर लिव उबरे अल्पत रहे शरणाए ओनी चलन सदा निहालिया हर खर चलिया पत पाए गुरमुख दरगह मन्य है हर आप ले गल लाए गुरमुखा नु पंथ प्रगटा दर ठाक न कोई पाए हर नाम सलाहन नाम मन नाम रहन लिवलाए अनहद तुनी दर वजदे दर सच्चे सोबा पाए जिनी गुरमुख नाम सलाहया तिना सब को कहे साबास तिनकी संगत देहे प्रभ मैं जाचक की अरदास नानक भाग बड़े तिना गुरमुखा जिना अंतर नाम प्रगास शरीरागम हल्ला पंचमा घर पहला क्या तू रता।

हाव कपड़े फोग लपटाया सोना रूपा खाक हैवर गैवर बहरंगे किए रथ अथाक किस ही चित न पावे।

तेस जात न पत सतगुर पुरख मिलाया इको सज्जन सोए हर जन का राखा एक है क्या मानस हों मैं रोए जो हर जन पावे सो कर दर फेर न पावे कोए नानक रत्ता रंग हर सब जग में चानन होए श्री राग महला पांचवा मन बिलास बहु रंग कणा दृष्ट फूल खुशिया छतर तार बाद साहिया विच सहजे परिया पाई रे सुख साध संग पाया लिखिया लेख तन पुरख विधाते दुख सहसा मिट गया रहाओ जेते थान थनंतरा तेते पव आया तन पाती वड़ भूमिया मेरी मेरी कर परिया हुक्म चलायन संग होए वरतै अफरिया सबको वस्कत कर लायो।

बचन कमाहे रहाओ हरी नाही न डूरी पक्की वंडन हा वडन हार ले ले दात पहुतिया लावे कर तैयार जाहो आ हुकम।

मन पई मिलिया पुरख सुजान नानक डिठा सदा नाल हर अंतर जामी जान सरी राग महला पांजमा सबे गला विसरन इको विसर न जाओ तंदा सब जलाए कै गुर नाम दिया सच सुआओ आसा सबे लाहे कै

सेव को लाइया अपनी सेव साधु संग मस्त ते तुठे पावा देव सब किछ वस्कत साहे।

पवित है जिथे संत सभा ढोई तिसी नो मिले जन पूरा गुरु लब्बा नानक बद्दा कर तहां जिथे मृत न जन्म जरा सरी राग महला पंजमा सोई त्याये जीड़े सिर साहा पात साहो तिस ही के कर आसमान

मानप सगल छाड़ गुर की चरणी लाग तिसे प्राप्त रतन होए जिस मस्तक होवे पाग तिसे प्राप्त पाई हो जिस देवे प्रभ आप सतगुर की सेवा सो करे जिस बिन से हम मैं ताप नानक गौ गुर पेटिया बिन से

सुख पार ब्रह्म करतार, मन मेरे सगल अपाव त्याग, गुर पूरा आराधनित इक्स की लेवलाग, रहाओ इको पाई मित।

ताप एक से तीरत्या ना होवी सोग संताप। पार ब्रह्म प्रभ एक है दूजा नाही कोए, जियो पिंड सब तिसका

पंजमा जिना सतगुर स्यो चित लाया से पूरे प्रदान। जन को आप दयाल होए तिन उपजे मन ज्ञान। जिनको मस्तक लिखिया तिन पाया हर नाम। मन मेरे एको नाम त्याए सर्व सुखा सुख उपजे।

जिन मन वसिया पार ब्रह्म से पूरे परधान, तिनकी शोभा निर्मली प्रगट पई जहान। जिनी मेरा प्रभ त्याया नानक तिन करिबाण, श्री राग महला पंजमा मिल सतगुर सब दुख गया, हर सुख वसिया मन आए अंतर ज्योत परगासिया, एकस स्योल विलाए मिल साधु।

गुर का शब्द पछान भगत जना को राखदा अपनी कृपा तार हलत पलत मुख उज्जले साचे के गुण सार आठ पहर

कृपन रंजनो गुर मेल्या माए पाई रे मीत करो प्रभ सोए माया मो प्रीत त्रग सुख सखी नद सै कोए रहाओ दाना दाता सिलवंत निर्मल रूप अपार सखा सहाई अत वडा ऊंचा वडा अपार बालक बिरद न जानी ऐ नेह चल तस दरबार जो मंगी ऐ सोई पाई ऐ निधारा आधार जिस पेखत किल बिखर है

मन तन मन तन अर्पी सबो सगल वारिये जिंद देखै सुनै हदूर सद कट कट ब्रह्म रविंद अकिरत कणा नो पालदा प्रभ नानक सद बखसंद श्री राग महला पंजमा मन तन तन।

मन हर हर नाम त्याए, कर संगत नित साध की गुर चरणी चित लाए। रहाओ नाम निदान त्याई है मस्तक होवे पाग, कारज सब सवारी है।

प्रसाद की 68 तीर्थ नाओ, जियो प्राण मन तन हरे साचा ए हो स्वाओ। इथे मिले बढ़िया दरगह पावे थाओ, करे कराए आप प्रभ सब।

प्रभु अपनी एक निमख न मनो विसार रहा। गुण गोविंद नित गावी है अवगण कटन हार। बिन हर नाम न सुख होए कर डिठे विस्थार। सहजे सिफती रतिया पव जल उतरे पार। तीर्थ वर्त लख संजमा पाई

अखनंतर रव रिहा प्रभु मेरा परपूर। सच पात साही अमर सच सच्चे सच्चा थान, सच्ची कुदरत तारियन सच सिरज्योन जहान। नानक जपी ऐ सब सच नाम हो सदा सदा कुर्बान। श्री राग महला पांजमा उद्दम कर हर जापना बड़ भागी तन खाट। सत संग हर सिमरना मल जन्म जन्म की काट। मन मेरे राम नाम जप जाप।

पंचमो आठ पहर गुण गाओ कर कृपा प्रभ तेतिया मरण न आवण जाओ। मेरे मन हर भज सदा इक रंग घट घट अंतर रव रिहा सदा सहाई संग रहाओ। सुखा कीमत क्या गणी जा सिमरी गोविंद जिन चाख्या सो तृप्ता स्या ओह रस जाने जिंद। संता संगत मन वसे प्रभ प्रीतम बखसंद जिन सेव्या प्रभ अपना सोई राज नरंद। औसर हर जस गुण रमन जित कोट मजन स्नान रसना उच्चरे गुणवंती कोई न पूजे दान। दृष्ट तार मन तन वसे दयाल पुरख मेहरवान जियो पिंड तन तिसदा हो सदा सदा कुरबान। मिलिया कदे न

गति जे सगल कटा आधार सरी राग महला पांजमा रसना सच्चा सिमरिया मन तन निर्मल होए मात पिता साथ अगले

है जिस दे चलत अनेक सदा सदा आराध्य है यह मत विशेख मन तन मिठा तिस लगे जिस मस्तक नानक लेख श्री राग महला पंजमा संत जनों।

मन गुरु जेवड़ अवर न कोय, दूजा थाओ ना को सुजे, गुर मेले सच सोए रहाओ। सगल पदार्थ तिस मिले जिन गुर डिठा जाए, गुर चरणी जिस मन लगा,

हाथ गुर अमृत नाम पिया लिया जन्म मरण का पथ। गुर गुर परमेश्वर सेविया पै पंजन दुख लाथ सतगुर गहर गंभीर है सुख सागर अगखंड जिने गुर सेविया अपना जमदूत न लागे डंड गुर नाल तुल न लग गई खोज डिठा ब्रह्मांड नाम निदान सतगुर दिया सुख नानक मह मंड शरीराग महला पांचवा।

रहाओ। जो कुकर हर काया तावे दे दिस जाए, लोभी जंत न जाने पखो अपख सब खाए। काम क्रोध मद व्याप्या फिर

चलिया ता तन खाकूराल। मन बैराग भया दर्शन देखने का चाओ, तन सो तेरा थान रहाओ। जिचर वसिया कांत कर जियो जियो।

के चरण मन महत्याए, छोड़ सगल स्याण पा साची शब्द लेवलाए। रहाओ दुख कलेश ना पो व्यापै, गुर मंत्र हृदय होए, कोट जतना कर रहे गुर बिन तरयो न कोए। देख दर्शन मन सधारे, पाप सगले जाहे, हौ तिन कै बलिहारण जे गुर की पैरी पाहे। साध संगत मन वसै,

लाही। कहन कहावन इहो किरत करला, कथन कहन ते मुक्ता गुरमुख कोई विरला। गत अवगत कछ

पंजमा कर सतमा तेरा परोसे प्यारे मैं लाड लडाया कुल है चुक है बारक तू हर पिता माया सुहेला कहन कहावन तेरा विखम पावन रहाओ।

साजन हर हर नाम समाल, साधु संगत मन वसै पूरन होवै काल रहाओ। गुर समरथ अपार गुर बड़ भागी दर्शन होए, गुर अगोचर निर्मला गुर जेवड़ अवर न कोए। गुर करता गुर करनहार गुरमुख सच्ची सोए, गुर ते बाहर कि

पहला अष्टपदिया। आख आख मन वावणा ज्यो ज्यो जापै वाए, जसनु वाए सुनाई है सो केवड़ कित थाए। आखण वाले जेतड़े

नानक साधक सोहदे और शहीद सेख मसायक काजी मुल्ला दर दर वे सरसीद बरकत तन को अगली पढ़दे रहन दरूद पुछ न साजे पुछ न टाहे

साची प्रीत न टुटई साचे मेल मिलाओ सब दरती मन वेदिया हो सद बलिहार जाओ सातन रंड न बेसई जे सतगुर महेश माए पर रिसालू नौ तनो साचो मरे न जाए नित रवै सुहाग।

वसी नानक प्रेम सखाए श्री राग महला पहला आपे गुण आपे कथे आपे सुन विचार आपे रतन परख तू आपे मोल अपार साचो मान मह

0: नानक रचना प्रभ रची बहुत अनेक प्रकार अष्टपदी
1: कई कोट बनकर उदासी कई कोट होते कई कोट कपीचर होते कई कोट आत्म त्यांतार है कई कोट कब का विचार है कई कोट नवतन नाम त्यावे नानक करते का अंत न पावे कई कोट पै अभिमानी कई कोट अंध अज्ञानी कई कोट कृपन कठोर कई कोट अपिग आत्म निकोर कई कोट पर दर्प को हिरे कई कोट पर दुख न करे कई कोट माया श्रम माहे कई कोट पर देश ब्रह्म माहे जित जित लावो तित लगना नानक करते की जाने करता रचना कई कोट सिद्ध जोगी कई कोट राजे।

कोट की ये तनवंत कई कोट माया मैं चिन्ह जय जय पाणा तह तह राखे नानक सब किश प्रभ के हाथे कई कोट पई बैरागी राम नाम संग तिन निवलागी कई कोट प्रभ को खोजनते आत्म मैं पार ब्रह्म लहनते कई कोट दर्शन प्रभ प्यास तिनको मिल्यो प्रभ बिनास कई कोट मांगे सत्संग पार ब्रह्म तिन लागा रंग जिनको हुए आप सुप्रसन्न नानक ते जन सदा तन तन कई कोट खानी अरखंड कई कोट आकाश ब्रह्मंड कई कोट होए अवतार कई जुगत की नो विस्तार कई बार पसरे पसार सदा सदाए के कंकार कई कोट की निबो पात प्रभते हुए प्रभ माहे समाध ताका अंत न जाने कोई आपे आप नानक प्रभ सोए।

महाक्रोध बिकराल कबू सर्व की हो त्रवाल कबू होए बह बन राजा कबू पिखारी नीच का साजा कबू अपकृत में आवे कबू पला पला कहावे जो प्रभु राखे तिभी रहे गुर प्रसाद नानक सच कहे कबू होए पंडित करे बख्यान कबू मोन तारी लावे ध्यान कबू तरती रथ स्नान कबू सिद्ध साधक मुख ज्ञान कबू कीट हस्त पतंग होए जिया अनेक जोन पर मैं पर मिया नाना रूप जो स्वागी दिखावे जो प्रभु पावे तिवे नचावे ज्योतिष पावे सोई होए।

विस्ता का जन आपस को कर वंत कहावे जन्म मरे बो जोन परमावे तन पूम का जो करे गुमान सो मूर्ख अंधा ज्ञान कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे नानक यहाँ मुक्त आगे सुख पावे धनवंता होय कर गरबावे तृण समान कर संग न जावे बोलस कर मानुक ऊपर करे आस पल पीतर ताका होय बिनास सब ते आप जाने बलवंत किन मैं होए जाए पसमंत किसे न बदे आप हंकारी तरम राय तिस करे खुवारी गुर प्रसाद जक मिटे अभमान सोजन नानक दर गह परवान कोट कर्म करे हो तारे श्रम पावे सगले बिरतारे अनेक तपस्या करे अहंकार नरक सुर्ग फिर अवतार अनेक जतन कर आत्म नहीं द्रवे हर दरगे को कैसे गवे आपस को जो भला कहावे तिसे भलाई निकट न आवे सर्व किरण जा का मन होए को नानक ताकि निर्मल सोए जब लग जाने मुझते कुछ होए तब इस वो सुख नाही कोए जब ए जाने मैं किस करता तब

रहा समाई। आप उपदेश समझे आप आपे रचिया सबके साथ, आपकी नोया अपन विस्तार सब कुछ उसका करने हार। तो उससे पिंड कहो किछ होए, थान तनंतर एक कैसोए, अपने चलत आप करने हार, गौतर करे रंगे अपार। मन में आप मन अपने माहे, नानक कीमत कह न जाए। सत सत सत प्रभ स्वामी, गुरु प्रसाद की ने वकियानी। सच सच सच सब की ना, कोट मदे किने बिरले चीना। पला पला पला तेरा रूप, अत सुंदर अपार अनूप। निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी, कट कट सुने श्रवण बखियानी। पवित्र पवित्र

बहुर बहुरे अवतार अष्टपदी। संत के दुखन आर जा कटे, संत के दुखन जमते नहीं छुटे, संत के दुखन सुख सब जाए, संत के दुखन नरक में पाए, संत के दुखन मत होए मलिन, संत के दुखन सो बातें हीन, संत के हते को रखे न कोई, संत के

जीवन खोए कह भगवान जिसके दिए रहे अघाई बहुत न तिसना लागे आए मारे रखे कुआप मानु कह कृष्णा ही हाथ तिसका हुक्म भूत सुख होए तिसका नाम रख कंठ परोए सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए नानक विघ्न न ला

जप ये हर बिन कर हर करम श्रवन हर कथा हर दरगह नानक उजल मथा बट बागीते जन जग माहे सदा सदा हर के गुन गाहे राम नाम जो करे विचार से।

अन्य गुर प्रसाद आपन आप सुजय तिसकी जानो तृष्णा बुझे साध संग हर हर जस कहत सर्व रोग त्यो हर जन रहत अंदिन कीर्तन केवल बख्यान गृहस्थ में सोई निर्वाण एक ऊपर जिस जन की आशा तिसकी कटिया जम की फासा पार ब्रह्म की जिस मन भूख नानक तिसे न लागे दुख जिसको हर प्रभ मंचित आवे सो संत सुहेला नहीं डुलावे जिस प्रभ अपना कृपा करे सो सेवक को किससे डरे जैसा सा तैसा दिष्टाया अपने कार्य में आप समाया सोदत सोदत सोदत सीजिया गुर प्रसाद तत् सब बुझिया जब देखो तब सब किश मूल नानक सो सुखम सो ही असूल न के जन्म न किश मरे आपन चलत आप ही करे आवन जावन दिष्ट अंदिष्ट आज्ञाकारी तारी सब श्रेष्ठ आपे आप सगल में आप अनेक जुगत रिच थाप उथाप अविनाशी ना ही किछ खंड तारण तार रहो ब्रह्मण अलक अपे पुरख प्रताप आप जपाए त नानक जाप जिन प्रभ जाता सो शोभावंत सगल संसार उदरे तिन मंत प्रभ के सेवक सगल उदारण प्रभ के सेवक दुख बिसारण आपे मेले कृपाल गुरु का शब्द जपे निहाल उनकी सेवा सोई लागे जिसनो कृपा करे बट भाग्य नाम जपत पावे विश्राम नानक तिन पुरख को उत्तम करमान जो किश करे सो प्रभ के रंग सदा सदा बसै हर संग सहज सुभाए हो वैसो होए करने हार पछाने सोए प्रभ का किया जन मीठ लगाना जैसा सा तैसा दिष्टाना जिससे उपजत समाए समाए उस सुख निदान उन्हों

जय अचल अचेद अपेद समाया उहां किसे भे आपत माया आपस को आपे आदेश तय गुण का ना ही परवेश जय के एक एक भगवंता तय कौन अचिंत किस लागे चिंता जय आपन आप पतियारा तय कौन कथे कौन सुनने हारा बहु बेअंत उचते उच्चा नानक आपस को आपे पहुंचा जय आप रचियो पर पंच अकार तय गुण में कीनो विस्तार पाप पुन तय पई कहावत को नरक को सुरक बंचावत आल जाल माया जंजाल मैं मोह परम पै पार दुख सुख मान अपमान अनेक प्रकार की यो बखियान आपन खेल आप कर देखे खेल संकोच तो नानक एक है जय अवगत भगत तय आप जय पसरे पसार सन प्रताप दूपा काया पे तनी उनकी शोभा उन्हों बनी आपे कौतक करे अनद चोज आपे रस भोग निर्जोग जिस

बिस्तर जाते स्पावित असिस छुपाए अपने पाने ले समाए तुम ते पिन नहीं किच होए आपन सूत सब जगत पर होए जाको प्रभ जो आप बुझाए सच नाम सोई जन पाए सो समदर्शी तत् का बेता नानक सगल शिष का जेता जी जंत्रता के हाथ दीन दयाल अनाथ को नाथ जिस राखे तिस कोई न मारे सो मुआ जिस मनो बिसारे तिस तज अवर कहाँ को जाए सब सिर एक निरंजन राय जी की जुगत जा कह सब हाथ अंतर बाहर जानो साथ गुण निधान बेअंत अपार नानक दास सदा बलहार।

मूल सर्व ज्योत में जा की ज्योत तारे हो स्वामी उत्पोत गुर प्रसाद भ्रम का नास नानक तिन में ए विसाद संत जना का पेखन सब ब्रह्म संत जना के हृदय सब धर्म संत जना सुने सुब बचन सर्व व्यापी राम संग रचन जिन जाता तिसकी एह रहत सत बचन साधु सब कह जो जो होई सोई सुख माने करन करावन हार प्रभ जाने अंतर बसे बाहर पियो ही नानक दर्शन देख सब मोही आप सत किया सब सत तिस प्रभ ते सगली उत्पत तिस पावे तक।

नैना पेखनहारा सगल समगरी जाका तना आपन जैसे आप ही सुना। आवन जानिक खेल बनाया आज्ञाकारी की नीमाया सब कह मद अलिप्तो रहे जो किश कहना सो आपे कहे आज्ञा आवे आज्ञा जाए नानक जा पावे तले समाए। इससे होए सुना ही बुरा और कहो कि ने कश करा आप ला करतूत अतनी की आपे जाने अपने जी की। आप साच धारी सब साच ओत पोत अपन संग राज ताकि गदमित कही न जाए दूसर होए तसो जी पाए तिसका किया सब परवान गुर प्रसाद नानिक हो जान। जो जाने तिसका सुख होए आप मिलाए लय प्रभ सोए ओतनवंत कुलवंत पतवंत जी।

इस बार ब्रह्म निकट कर पे एक साथ साथ सिमरो गोबिंद मन अंतर की उतरे चिन्ह आस अनित त्या गो तरंग संत जना की दूर मन मंग आप छोड़ बेनती करो सात संग गगन सागर तर हो हर तन के पर ले हो पंडार नानक गुरपुरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद सात संग पंच परमानंद नरक निवार उधारो जियो गुण

तुम से लोक साध के बचन अमलीक लाल ए हरतन सुनत कमावत होत उधार आप तरह लोक है निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जा कै मन लागा हर रंग जय जय सबद अनाहत वा जय सुन सुन अनंत करे प्रभु।

पूरन होई सेवक की सेव, आल जंजाल बिकारते रहते, राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद, दया प्रभ तारी नानक निब्बी खेप हमारी। प्रभ की उस्तत करो संत मीत, सावधान एकागर चीत, सुखमनि सहज गोविंद गुण नाम, जिस मन बसे सो होत निधान, सर्व इच्छा ताकी पूरन होए, प्रदान पुरख प्रगट सब लोए, सब ते उच पाए स्थान, बहर न हो वे अमन जान, हर तन खार चले जन सोए, नानक जिसे प्राप्त होए, खेम शांत रिद नव निध बुद्ध ज्ञान, सर्व तय सिद्ध विद्या तप जोग प्रभ ध्यान, ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान, चार पदार्थ कमल प्रगास, सबके मद सगल ते उदास, सुंदर चतुर तत्का बेता समदर्शी।

आप सारियां संगतां, बच्ची दा जन्मदिन है, पहला जन्मदिन है, महाराज ने मेहर कीती है, माता पिता भी कर्मा वाले ने, सरदार अमनजीत सिंह कलोटिया और तिना दी धर्म पत्नी रूहानी कौर कलोटिया, महाराज ने मेहर कीती है, बच्ची अरनाज कौर कलोटिया, पहला जन्मदिन है, अपने अपने कर्म ने, बच्ची अपने कर्म लेके आई ते सब नु जोड़ दिता मालक नाल, ते तुसी सारे मिलके गाओ, तुहाडे बच्चियां नु भी असीस मिल जाए, तुहाडे साडे घरां विच सुख बन जाए। सच्चे प्यारे हो, कीर्तन ही सुख है, जिथे बाणी दा पहरा है। इंज कह लईए, जिन्हां नु शुकराना करना आ गया महाराज दा, उन्हां दे सारे फिकर मुक जांदे। कह दिओ सारे, करियो कृपा जी।

बोलो जी, बोलो जी। अरदास एक ओहंकार, श्री वाहेगुरु जी की फतेह, श्री भगवती जी सहाय, बार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं, प्रथम भगवती सिमर कह गुरु नानक लई त्याए, फिर अंगद गुरते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जन हर गोविंद नो सिमरो श्री हर राय, श्री हर कृष्ण त्याई जे दिठे, सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरै, कर नौ निधावै ताए, सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत शब्द गुरु, गुरु ग्रंथ साहब जी दे पाठ दर्शन दार जी का ध्यान करके बोलो जी। पंजा प्यारियां चौहां साहबजादियां चालियां मुक्तियां हटियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया, वंड के छकिया देग चलाई तेग वाही, देख के अंडिट किया तिना प्यारियां सचेरियां की कमाई का ध्यान करके बोलो जी। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते, बंद बंद कटाए खोपरियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आरियां नाल तन चिरवाए, गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां सिखी केसां स्वासां संग निभाई, धर्म नहीं हारिया इन्हां दी कमाई का ध्यान करके बोलो जी। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दी कमाई का ध्यान करके बोलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है, सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। चित आवे चितावन का सदका सर्व सुख होए, जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रचिया रियायत देग तेग फतेह, बिरद की पैज पंथ की जीत, श्री साहब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले। बोलना जी। सिखां नूं सिखी दान, केस दान, रहत दान, विवेक दान, विसाव दान, भरोसा दान, दाना सिर दान, नाम दान। श्री अमृतसर जी के दर्शन इशनान, चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल, धर्म का जयकार खालसा जी के बोल बाले। बोलना जी। सिखां दा मन नीवा, मत उची मत पद दा राखा, आप अकाल पुरख वाहिगुरु, हे अकाल पुरख सतगुरु, अपने पंथ दे सदा सहाई दाता जो श्री ननकाणा साहब, होर गुरुद्वारियां गुरुधामा जिन्हों तो पंथ नूं विछोड़िया गया तिन्हां दी सेवा संभाल, खुले दर्शन दीदार प्यारे पंथ, खालसा जी नूं बख्शिश करो निमाणियां दे माण, निताणियां दे तां, नियोटियां दी ओट, गुरु गरीब निवाज। धन गुरु नानक साहब जी, धन गुरु गोबिंद सिंह जी, धन धन धन धन गुरु ग्रंथ साहब जी, शब्द गुरु बाणी के मोहित नाम के, जहां सच्चे पातशाह आप जी दियां मेहरां हो रही हैं। महाराज जी आप जी दे मुबारक चरना कमला विच अरदास बेनती है, तुहाडा साझिया होया परिवार सरदार अमनजीत सिंह कलोटिया, तिना दी धर्म पत्नी रूहानी कौर कलोटिया, महाराज जी तिना दी प्यारी बच्ची अरनाज कौर कलोटिया दा पहला जन्मदिन, महाराज जी तुहाडे चरणा विच बड़े प्यार सत्कार भावना नाल गुरमुख परिवार ने मनाया, तुसी मेहरां कीतियां, तुसी तरस कीता दाता जी। सुखमनी सुखमृत प्रभना भगत जना के मन विश्राम परिवार वालों सुखमनी साहब जी का पाठ आप जी नूं सोहना रुमाला भेटा किया गया, महाराज जी अंगीकार करो। सेवकां दे परदे कजने सच्चे पातशाह परिवार वालों कड़ा प्रसाद की देग हाजिर है, भोग लग्या प्रसाद जो भी छके, सतनाम वाहिगुरु वाहिगुरु जपे। बेअंत सेवावां गुरमुख परिवार वालों लंगरां दियां संगतां दियां सेवकां दियां कीतियां जा रही हैं, महाराज जी दादा अमरजीत सिंह कलोटिया, दादी परविंदर कौर कलोटिया, नाना हरमिंदर सिंह हुंडल अते नानी मनजोत कौर हुंडल, सच्चे पातशाह वड्डियां दा आशीर्वाद बना के रखियो। महाराज जी बच्ची अरनाज कौर कलोटिया मेहरा बख्शिश करियो, पूता माता की असीस निमक ना विसरो, तुमको हर हर सदा भजो, जगदीश वाली बख्शिश बच्ची की झोली विच पाउणा। महाराज जी सरदार अमनजीत सिंह कलोटिया अते रूहानी कौर कलोटिया सारे परिवार नूं चढ़दी कला सेवा थाएं पा लैणी, बच्ची आग्ञाकार माता पिता दे बनायो, माता पिता जी का नाम रोशन करे, विद्यादान गुरु घर नाल प्यार तुहाडी बंदगी भजन वाली बच्ची बने। महाराज जी सब तरह करके मेहर करियो, सारिया संगतां ने मिल बैठ के कीर्तन गाया, महाराज जी सब दी हाजरी परवान, आप जी जानी जान हो, जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे, नानक दास मुखते जो बोले ईहां ऊहां सच होवे। महाराज जी सारिया संगतां दी तिल फुल भेटा परवान, दसरियां दी हाजरी परवान, बेअंत भुलां हो गई अगां वास्ते सुमत, दसरियां दे आने वाले सारे कारज रास
महाराज जी सुख वरतायो, सुख वरतायो, सदा अपने चरणा नाल जोड़ के रखियो, सुख होवे, नाम चितावे, नानक नाम। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की।

0: खोज शब्द में राज करेगा खालसा आकी। ख्वार होए सब मिलेंगे, ख्वार होए सब मिलेंगे, बोले सोनिहा।
1: वाहिगुरु जी का खालसा।

निमखन बिसरो तुमको हर हर सदा भजो जगदीश। सतना वाहिगुरु साहिब जी। सोरठ महला पंजवा घर दूजा। मात गर्भ मह आपन सिमरन देह तह तुम राखन हारे। पावक सागर अथा लहर में

करणहार तृण जाने। तू दाता मांगन को सगली दान दे प्रभु पाने। खिन मह अवर खिने मह अवरा अचर्ज चलत तुम्हारे। रूढ़ो गूढ़ो गहर गंभीरो ऊंचो अगम पारे। साध संग जो तुम्हें मिलायो तो सुनी तुम्हारी वाणी। आनंद भया पेखत ही नानक प्रताप पुरख निर्वाणी। साध संग जो तुम्हें मिलायो तो सुनी तुम्हारी वाणी। आनंद भया पेखत ही नानक प्रताप पुरख निर्वाणी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सोरठ महला पंजवा, घर दूजा, मात गर्भ में आपन सिमरन दे। तह तुम राखन हारे, पावक सागर अथा लहर में तारो तार नहारे। गुरु अर्जन देव सचे पातशाह कहंदे ने, मां दे गर्भ विच भी उन्हें हथ दे के रख्या कीती, उत्थे भी सिमरन सी, नाम सी। ते संसार सागर विच भी जे पार उतारा करना है ते उत्थे भी इत्थे भी महाराज दा नाम जपिए। पुर चुक दिखी मां कड़ा प्रसादी देग वरताई जाएगी। गुरु का लंगर आप जिया ने छके जाना जी। पुर चुक दिखी मां। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की।